हम आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.2 MHz पर। श्रोताओ, आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा यहीं आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के ठीक 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम वंदना।

देश की मिट्टी सर्वोपरि है, ये केवल एक भाव नहीं, हाँ ये केवल एक भाव नहीं बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का आधार है। भारतीय मिट्टी जो अपनी विविधता और उपजाऊ क्षमता के लिए जानी जाती है, हमें अन्न, जल और जीवन प्रदान करती है। ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है जिसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य भी है। प्रथम वंदन देश की माटी को, शत शत नमन, शत शत नमन।

सच्चा जागना सच्ची वंदना होती है, जो केवल औपचारिक पूजा या दिखावा नहीं होती है, बल्कि जो

हृदय में ईश्वर, गुरु या सत्य के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण से की जाए, वो होती है वंदना। वंदना एक माध्यम जिससे ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन और आशीषों के लिए धन्यवाद किया जाता है। अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के अधीन किया जा सकता है और बिना किसी स्वार्थ या याचना के केवल ईश्वर का स्मरण और स्तुति की जा सकती है। इसका उद्देश्य कुछ पाना, कुछ मांगना नहीं है, बल्कि कृतज्ञता प्रकट करना है और अपने अंदर बसे अहंकार को मिटाना है। अपने आचरण में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाना ही सबसे अच्छी और सबसे सच्ची वंदना है।

कि हे ईश्वर, मेरी आराधना को सुनिए। मैं तुम्ही को तो पाना चाहता हूँ, केवल तुम मेरे आराध्य हो और मेरी सभी इच्छाओं को पूरे करना आपको तो बनता ही है। करुणा को अपनाने वाले, मेरी कृतज्ञता को प्रणाम मेरा स्वीकार कीजिए। ईश्वर का स्मरण और स्तुति बस यही तो है वंदना। जब हृदय की वंदना उन तक पहुंचती है तो सच्चिदानंद प्राप्त हो जाता है, सत्चित आनंद, ऐसा आनंद जो हमारे अंदर बसा हुआ है। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया, आशीषों का भंडार भर दिया, तो हाँ, उनके लिए ये धन्यवाद।

मांगू भी तो किससे, आप ही तो हैं जो दिल की हर एक बात सुन लिया करते हैं। आदर्श महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे हमें वर्तमान में ढालते हैं, हमारे भीतर सर्वोत्तम क्षमता को जगाते हैं, जीवन को सर्वोत्तम दिशा देते हैं, जीवन को एक ऐसी दिशा देते हैं जो हमारे लिए भी अच्छी हो और सामने वाले के लिए भी। हम अपने जीवन को वर्तमान से बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहते हैं। आदर्श हमें साधारण जीवन जीने से रोकते हैं, वे हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपने आदर्श जीवन और अपने आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कई बार महापुरुषों या देवी देवताओं को अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण भी करते हैं, जैसे राम, जिनका जीवन धर्मयुक्त और आदर्श माना जाता है, जिसके कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी लीला वे ही जाने, क्योंकि ईश्वर तो हर प्राणी में निवास करता है।

हाँ, राम जी के नाम ने तो कितनों को तार दिया। परम ऊर्जा मनुष्य से कहती है कि हे मनुष्य, तुमने संसार में आकर प्रभु का नाम जपना तो बंद कर दिया, लेकिन अपने अंदर के अवगुण बुराइयां नहीं छोड़ा तुमने अब तक। तुमने गुस्सा करना, झूठ बोलना और सबका साथ देना क्यों छोड़ दिया? मनुष्य ने इस झूठी दुनिया के लालच में आकर अपने असली मकसद परमात्मा की भक्ति और सत्य के मार्ग को भुला दिया है और मोह माया में पड़कर अपना अनमोल जीवन और यह अनमोल समय व्यर्थ कर रहा है। जिस ईश्वर के नाम का स्मरण करने से परम सुख की प्राप्ति होती है, हमने उसी सिमरन का ध्यान क्यों त्याग दिया? क्यों हम भूल गए कि किसी ने तो हमें बनाया है? क्यों ये हम बार बार भूल जाते हैं कि किसी ने तो हमें बनाया है? जिस ईश्वर के नाम का स्मरण करने से परम सुख की प्राप्ति होती है, हमने उसी सुमिरन का ध्यान क्यों त्याग कर दिया? मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, इसे झूठ, क्रोध और व्यर्थ की मोहमाया में बर्बाद करने के बजाय ईश्वर के नाम सिमरण में क्यों ना लगाया जाए? अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है, परमात्मा की भक्ति करना है और सत्य के मार्ग में चलना है। मोह माया में पड़कर अपना अनमोल जीवन व्यर्थ नहीं करना।

परम ऊर्जा बस यही कहती है कि हे मनुष्य, हमने संसार में आकर प्रभु का नाम जपना तो बंद कर दिया, लेकिन अपने अंदर के अवगुण बुराइयों को नहीं छोड़े। हाँ, सिमरन या ध्यान यही तो है जो अंदर की ओर ले जाता है, हमें अपने आप से रूबरू करवाता है। झूठ, क्रोध और व्यर्थ की मोहमाया, ये सब कुछ दूर हुआ करती है। ईश्वर का नाम सिमरन यही तो है। नाम सुमिरने से अंदर आनंद मिलता है, सच्चिदानंद मिलता है। कबीर के अनुसार ईश्वर हर प्राणी में निवास करता है, वो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, उसके लिए हमने अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। वो हर प्राणी की सांसों की सांस में निवास करता है, इसलिए जब तक जीव की सांसें चल रही है तब तक वो जीवित है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आज में हम जीवित हैं, इसलिए तो आनंद में जीना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए, अपने आप में खुश रहना चाहिए। तब तक उसके अंदर ईश्वर का निवास करता रहे, इसलिए कबीर ने ईश्वर का निवास प्राणी की हर सांस में बताया है।

जो व्यक्ति नित नित ध्यान करता है सांसारिक मोहमाया अज्ञानता या पापों के दलदल में, ऐसा व्यक्ति जो बाहर आ चुका है, पतित पावनी हो चुका है, उसे इस स्थिति से बाहर निकालकर आध्यात्मिक शांति, मोक्ष

जो व्यक्ति नित नित ध्यान करता है सांसारिक मोहमाया अज्ञानता या पापों के दलदल में, ऐसा व्यक्ति जो बाहर आ चुका है, पतित पावनी हो चुका है, उसे इस स्थिति से बाहर निकालकर आध्यात्मिक शांति, मोक्ष और सदगति प्रदान करने वाली शक्ति ही पतित उद्धारिणी कहलाती है, माँ

ध्यान लगाएं, अपने अंदर उस प्रभु को खोजें, सच्चिदानंद की प्राप्ति करें, अंदर ही अंदर आनंद में डूबे रहें। इसी बात के साथ आज की वंदना यहीं समाप्त होती है। दुर्गेश नामदेव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। आज है स्वर हरिहरन और साथियों का, कड़ी संख्या 404।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज करुड़, सभी जीव हर्ष विषाद भय प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं तो मिट जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मन है रोगों से

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति हरिहरन और साथियों के स्वर में थी। आकाशवाणी का ये छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन, विषय है एक नवयुगल। आलेख विवेक रंजन श्रीवास्तव का और वाचन स्वर शैलेंद्र जोगी का।
1: एक नव युगल में सुबह की चाय के साथ बहस हो रही थी। पत्नी शिकायत कर रही थी कि पति सोते हुए बहुत तेज खर्राटे लेते हैं, जिससे उसे नींद में परेशानी होती है। पति को यह बात पूरी तरह झूठ मालूम हो रही थी। उसके अनुसार वो बिल्कुल शांत सोता है। मन ही मन पति ने अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया और अगली रात उसने सोने से पहले अपना लैपटॉप वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर सेट कर दिया। अगली सुबह पुनः चाय के समय उसने नींद में खर्राटों की बात छड़ी और रिकॉर्डिंग चला दी। उसने देखा कि लगभग आधे घंटे तक तो वो शांत सोता रहा, पर उसके बाद उसके तेज खर्राटे थोड़े थोड़े विराम से प्रारंभ हो गए। वो खिसियाई हुई हंसी हंसने लगा। पत्नी जी, अपनी शिकायत की सत्यता प्रमाणित हो जाने से मैं तो पहले ही कह रही थी वाले गर्वोन्मत्त अंदाज में मुस्कुराने लगी। रिकॉर्डिंग चल रही थी, पर ये क्या, अब पत्नी जी भी धीमे धीमे आवाज में ही सही पर खर्राटे भरने लगी। पति पत्नी हंसते हुए चाय पीने लगे और उन्होंने चिकित्सक के पास जाने का निर्णय लिया। हम इससे अनेक अपनी जीवन यात्रा के बारे में भी वैसे ही अनभिज्ञ बने रहते हैं जैसे रात की गहरी नींद हो। जिस तरह हमें नींद में लिए जा रहे खर्राटों का एहसास नहीं होता, यह विस्मित स्वप्न की तरह ही जीवन में अनेक बार हम सत्य से परे पूर्व निर्धारित सोच के आधार पर अपना पक्ष रखते रहते हैं। सफल जीवन तभी जिया जा सकता है जब हमारे अवचेतन में भी जीवन मूल्यों और जीवन लक्ष्यों का पूरा एहसास हो। किसी कवि की पंक्तियां हैं, अरुणोदय सम जीवन निखरे, कली कली हर पथ बिखरे, जीवन दीप जले यूं जग में जैसे सूर्योदय हो नभ में। ये पंक्तियां कवि की शुभेच्छाएं हैं। जीवन कैसा हो इसके प्रति दिशा दर्शक भी हैं। प्रत्येक दार्शनिक अपने ही दृष्टिकोण से जीवन जीने की राह दिखाता है और जीवन की एक नई ही व्याख्या करता है। संभवतः जीवन की जितनी उपमाएं दी गई हैं उतनी किसी अन्य की नहीं। शायद यही विविधता ही जीवंतता है। किसी नवजात शिशु के लिए माँ का आंचल ही उसकी समग्र सृष्टि है, तो वात्सल्य भावना में रची बसी माँ के लिए उसकी संतान ही उसका जीवन है। मरुस्थल में प्यास से भटकते हुए राही के लिए जहाँ चुल्लू भर पानी जीवन होता है, वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में छोटा सा सूखा आश्रय जीवन प्रतीत होता है। जीवन क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में कोई प्रेमी युगल कहेगा कि जीवन बाहर है। किसी वैज्ञानिक की नजरों में जीवन ईश्वर का श्रेष्ठतम आविष्कार हो सकता है, तो कोई दर्शन शास्त्री जीवन को सफलता असफलता सुख दुख आशा निराशा के बीच झूलता झूला बताएगा। जीने से हताश व्यक्ति मौत को जिंदगी कहेगा, तो दूसरा व्यक्ति जो जीवन से भरपूर होगा वो कहेगा मौत से जूझना ही जिंदगी है। वास्तव में अपने अपने कर्तव्यों का सही अनुपालन ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका जीवन होता है। एक टीवी शो में 50 लाख रुपए जीतने वाले एक प्रतियोगी ने इनाम जीतने के आनंद में कहा कि अब उसे 7 जन्मों तक नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु क्या इस रकम से अधिक की हैसियत रखने वाले सभी लोग हमेशा अकर्मण्य बैठे रह सकते हैं, या स्वयं ये प्रतियोगी भी समय के साथ जीवन यापन हेतु अपने इस तात्कालिक निर्णय में परिवर्तन नहीं करेगा। अर्थात जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण परिस्थिति और समय के साथ परिवर्तनशील होता है। उम्र के पड़ावों के साथ हमारे त्वरित जीवन लक्ष्य बदलते रहते हैं। जीवन की सफलता के लिए हमें आवश्यक अल्पकालिक लक्ष्यों को पहचानना और अपने लिए दीर्घकालिक जीवन लक्ष्यों को निर्धारित कर इनकी पूर्ति हेतु समर्पित जीवन जीना अति आवश्यक है। जीवन नश्वर है, किंतु जीवन में हमारे द्वारा किए गए कार्य जीवन के अमिट स्वर्णिम पहचान बन जाते हैं, या फिर दिग्भ्रमित क्रियाकलापों से हम स्वयं ही अपना जीवन कलंकित कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हमें भी परमात्मा ने अवसर दिया है कि हम स्वयं के जीवन को अपने क्रियाकलापों से अपने संदेश बना सकते हैं। इस सोच के साथ जीवन यापन

0: हमें हमारे परिप्रेक्ष्य में जीवन की वास्तविक परिभाषा बताता है और जीवन की सही राह दिखाता है। जीवन लक्ष्य स्वयं बनते जाते हैं। हम सब में वो क्षमता है कि कवि की कल्पना के अनुरूप हम आकाश में सुबह के सूरज की तरह अपने जीवन को प्रकाशवान बना सकते हैं। आवश्यकता स्वयं के सत्य को पहचान कर उचित दृष्टिकोण अपनाने की।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय था एक नवर युगल, आलेख विवेक रंजन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर शैलेंद्र जोगी का अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आइए जिसमें जानते हैं आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी सुधि श्रोताओं को दुर्गेश नामदेव का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुधि श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। आइए न श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में जानते हैं आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से बस कुछ ही देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा जरूर सुनिएगा। श्रोताओं, आज के अंक में आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री अनिल मालोनिया से उनके जीवन काल में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अल्पना गोलेंद्र की बातचीत जरूर सुनिएगा। समय एक बार पुनः आपको बताते हैं, अब से बस कुछ ही देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा। कार्यक्रम शब्द चित्र 7:20 पर जरूर सुनिएगा। शब्द चित्र के अंतर्गत आज हम सुनेंगे पवन शर्मा का काव्य पाठ। 7:35 पर सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत गंगा जरूर सुनेगा। प्रातः 8:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लेंगे। प्रातः 9 विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का आनंद लेंगे लगातार। प्रातः 10 बजे भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुगम संगीत होगा खास आपके लिए। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का वक्त होगा सुबह 10:30। प्रातः 11 विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का आनंद लेने हम लिए चलेंगे आपको मुंबई केंद्र। दोपहर 2 भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम होगा खास आपके लिए। दोपहर 2:30 का वक्त होगा विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का। दोपहर 2:30 से लगातार आप विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। संध्या 5:30 तक सांध्यकालीन प्रसारण सभा में 5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आज की बात का विषय होगा जानिए समावेशी भारत पहल के बारे में। होगा क्रम विज्ञान जगत, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे ड्रोन तकनीक का नागरिक और रक्षा क्षेत्र में उपयोग। इस विषय पर होगा क्रम फिल्म संगीत, आज का इतिहास, कल के आकर्षण भी बताएंगे आपको, साथ ही होगी ज्ञानमयी

अमृतवाणी शाम 6 बजे संजवाती कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। 6:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लेंगे। संध्या 7:20 का समय होगा कार्यक्रम किसान वाणी का। आज की बात का विषय होगा मानसून के समय खेत की तैयारी कैसे करें। चर्चा नत्रजन उर्वरकों का विकल्प हरी खाद जरूर सुनेगा। साथ ही आपको लोकगीत भी सुनवाएंगे, होंगे नियमित क्रम, तो जरूर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7:20 पर। रात्रि 8 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। भावनाओं पर केंद्रित होता है हमारा कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। मिश्र संगीत का कार्यक्रम सबरस का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9 बजे विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का आनंद लेने हम आपको लिए चलेंगे मुंबई केंद्र। लगातार आप सुन सकते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रात्रि 11 बजे तक। कार्यक्रमों की इन्हीं संक्षिप्त जानकारी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। अनुमति दीजिए आपके अपने रेडियो मित्र दुर्गेश नामदेव को, कहते हैं नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा, जिसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री अनिल मालोनिया से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अल्पना गोलेंद्र की बातचीत। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: आकाशवाणी ने अपने ऐतिहासिक प्रसारण यात्रा के शानदार 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस सफर को पूरा करने में हमारे श्रोताओं का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आकाशवाणी और श्रोताओं को जोड़ने की इस कड़ी में हम श्रोताओं के साथ लगातार संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं हमारे नियमित श्रोता श्री अनिल मालोनिया जी, जो पेशे से एक वकील भी हैं। तो स्वागत है श्री मालोनिया जी हमारे स्टूडियो में।
2: जी मैडम, धन्यवाद।
1: मालोनी जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हमारे आकाशवाणी या रेडियो से कब से जुड़े हुए हैं?
2: मैडम, वो तो मैं बचपन से जुड़ा हूँ, जब से वो संभाला हूँ मैं रेडियो को ही पाया हूँ। घर में सुबह की शुरुआत मेरी भजन और समाचारों से होती और रात के पुराने गीतों के साथ खत्म होती थी। धीरे धीरे रेडियो मेरी आदत ही नहीं, मेरी भावना का एक हिस्सा बन गया।
1: और आकाशवाणी मनोरंजन के साथ भरोसेमंद साधनों में से एक है, इसमें आपकी क्या राय है?
2: मैडम, मेरे लिए आकाशवाणी मनोरंजन का माध्यम ही नहीं बल्कि जीवन का साथी भी है, क्योंकि इसके अभाव में अपनापन है, सादगी है और सच्चाई भी। जब दुनिया शोर से भर जाती है तब रेडियो की मधुर आवाज मन को सुकून देती है। आकाशवाणी ने हमेशा परिवार के संस्कारों, समाज के संवेदनाओं को संजोकर रखा है, इसलिए आज भी इस पर अटूट भरोसा है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। आपके जीवन में रेडियो ने क्या ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे?
2: मैडम, रेडियो ने मेरे अकेलेपन में बहुत साथ दिया, कठिन समय में हिम्मत दी और खुशी में मुस्कुराना सिखाया। इसकी आवाज ने कई अनजान रिश्तों को भी अपना बना दिया, कई माँ की तरह समझाया तो कभी दोस्त बनकर हंसाया।
1: मनोरंजन के बदलते दौर में जहाँ हमारे पास मनोरंजन के ढेर सारे साधन हैं, सोशल मीडिया हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, ऐसे समय पे आप रेडियो को कहाँ पे पाते
2: हैं? आज तकनीकी चाहे कितनी भी आगे बढ़ गई हो, लेकिन रेडियो की आत्मीयता कहीं नहीं बदली। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में भी रेडियो दिलों के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ आवाज में इंसानियत और अपनापन दिखता है।
1: और आप ये बताइए कि रेडियो के योगदान को आप किस प्रकार से देखते हैं, कि समाज में रेडियो ने ऐसी क्या भूमिका निभाई है जिससे कि समाज को काफी लाभ हुआ है?
2: रेडियो ने मैडम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो ने समाज को जोड़ने का काम किया है, गाँव से

0: शहर तक हर वर्ग की जानकारी, शिक्षा और संस्कृति पहुंचाई है। यह सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं सुनाता बल्कि लोगों की भावनाओं को भी जोड़ता है।
1: जी, बहुत ही सही कहा आपने
0: जी।
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य पर रेडियो काम करता है।
0: बिल्कुल मैडम।
1: और शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती किसानी, कला संस्कृति में रेडियो के योगदान पर आपके क्या विचार हैं?
0: मैडम, रेडियो ने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दिया है। किसानों को नई जानकारी दी, बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और हमारी संस्कृति को जीवित रखा। सच कहूँ तो रेडियो ने समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
1: और जन जागरूकता लाने में रेडियो का क्या योगदान आप मानते हैं?
0: बिल्कुल मैडम, रेडियो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जागरूकता लाने में। पहले जो व्यक्ति इतना शिक्षित नहीं था, अंधविश्वास ही काफी था, जिसके कुछ कार्यक्रमों ने इन सब बातों को काफी हद तक दूर किया है।
1: जी मालोनिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है कि मीडिया के इस बदलते दौर में रेडियो की लोकप्रियता आज कहाँ है?
0: हाँ बिल्कुल मैडम, माध्यम बदल सकते हैं लेकिन भावनाएं नहीं। आज भी लोग सफर में, काम करते समय या रात की तन्हाई में रेडियो सुनकर सुकून महसूस करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि रेडियो की जगह कोई भी नहीं ले सकता।
1: आपने किस उम्र से रेडियो सुनना प्रारंभ किया मालोनिया जी?
0: मैडम ये सवाल तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शायद तब से जब समझ ही नहीं थी। बचपन में अपने परिवार के साथ बैठकर रेडियो सुनता था, वही आवाजें धीरे धीरे मेरी यादों और जीवन का एक हिस्सा बनकर रहे।
1: आपको आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं?
0: लगभग बहुत से कार्यक्रम पसंद आते हैं, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत।
1: और ये क्यों पसंद आ रहा है आप?
0: उसकी वजह यह है मैडम कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है, पता ही नहीं चल पाता कि आज कौन सा दिन है या कौन सा दिवस है। ये छिंदवाड़ा आकाशवाणी का कार्यक्रम मतलब विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि आज क्या विषय है। समसामयिक विषय भी रहते हैं और सबसे मुख्य चीज उससे रिलेटेड जब गीत प्रस्तुत किए जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: और रेडियो में आप और कौन से कार्यक्रम, नए कार्यक्रम चाहते हैं कि वो प्रसारित किए जाएं?
0: वैसे बोलने के लिए ऐसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि सभी लगभग कार्यक्रम बहुत अच्छे ही हैं, तो ऐसा कोई विशेष नहीं।
1: मालोनिया जी, आज मनोरंजन के हमारे पास ढेर सारे साधन उपलब्ध हैं, तो आप इसमें से किसे चुनना चाहेंगे और क्यों?
0: मैडम मैं तो रेडियो को ही चुनना चाहूंगा, ये बहुत आसान है, बहुत सस्ता माध्यम है और इस चीजों का ध्यान रखा गया। आज आप देखिए दूसरे साधन में अश्लीलता देखने मिल रही है, यहाँ एक परिवार के साथ बैठ के अपन ना देख सकते ना सुन सकते, लेकिन रेडियो में ये सारी चीजें नहीं है। इसलिए रेडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेडियो ने मुझे संवेदनशील बनाया, भाषा से प्यार करना सिखाया और रिश्तों की अहमियत समझाई। कई बार जब मन उदास होता था तो रेडियो की आवाज ने ही उम्मीद जगाई है।
1: आपके विचार से रेडियो हमारे युवा श्रोताओं के लिए किस तरह से लाभदायक है?
0: हाँ मैडम, जहाँ तक अपने आकाशवाणी छिंदवाड़ा का युवाणी कार्यक्रम आता है उसमें युवाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। यहाँ तक चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या उनके करियर से संबंधित हो, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है।
1: चलते चलते आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैडम आकाशवाणी परिवार को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारी भावनाओं, संस्कृति और संगीत को सहज कर रखा। और यह भी कहना चाहूंगा कि रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि इसकी आवाज में रिश्तों की मिठास और अपनेपन की खुशबू बसती।
1: जी बहुत ही अच्छी बात कही मालोनिया जी आपने। और तो श्रोताओं, आज इस कड़ी में हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता जुड़े जो कि श्री अनिल मालोनिया जी हैं, इनका हमारे स्टूडियो में आज आगमन हुआ, इसके लिए हम कहते हैं इन्हें धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी। आप मैडम
2: श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा के अंतर्गत ये रिकॉर्डिंग सुनी, जिसके अंतर्गत आज हमने सुना हमारे नियमित रेडियो श्रोता अनिल मालोनिया से अल्पना अर्जुन वार्गोलेंद्र की भेंट वार्ता। आइए हेलो छिंदवाड़ा के अंतर्गत एक देशगान सुनवाते हैं आपको।

इस देशगान के साथ ही कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 7 बजने वाले हैं श्रोताओं, अब हम सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए और इसी देशगान का आनंद लेते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2000

2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: सत्तर वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने खजरी रोड छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग

0: दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर, आज बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी और राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी। नौतपा के दूसरे दिन आज कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को श्री शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को श्री शाह त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। भीषण लू के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने उनसे परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य

0: सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री चौहान के अनुभव को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों श्री कैलाश चंद्र पंत और डॉ. नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश की महान विभूतियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों, रचनात्मक लेखन और शोध कार्य के लिए दी गई दीर्घकालीन सेवाओं से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर वन स्थान पर है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेज गति से अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ यह फील्ड कार्य 30 मई तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार और अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। राज्य में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। दिनांक 25 मई तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,34,309 मकान सूचीकरण ब्लॉक में कार्य पूरा किया जा चुका है। 2,39,09,808 मकानों की गणना की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल, ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इससे पहले नौतपा के पहले दिन कल प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। रांची में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वायरल घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुनासा एसडीएम ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित 5 अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित न होने पर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। झाबुआ में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान

के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। पंचज अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएम जनमन अभियान, धरती आबा अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा का ये छिंदवाड़ा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द चित्र, जिसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे पवन शर्मा का काव्य पाठ।

मैं पवन शर्मा जो नारदेव निवासी हूँ। मैं मूलतः लघु कथाकार हूँ। मैंने कहानियाँ भी लिखी हैं, कविताएँ भी लिखी हैं और अनेकों लघु कथाएँ भी लिखी हैं और देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कहानियाँ, कविताएँ और लघु कथाएँ प्रकाशित होती रही हैं। मेरी लघु कथाओं का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। अभी तक मेरे 6 लघु कथा संग्रह, 1 कहानी संग्रह और उसी कहानी संग्रह का उर्दू अनुवाद और एक काव्य पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी है। 3 लघु कथाओं पर शॉर्ट फिल्म का निर्माण भी हुआ है। आकाशवाणी के 90 वर्ष, भारतीय जनजीवन के सशक्त आवाज। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संचार माध्यमों की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। इनमें रेडियो ने जनमानस तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का जो कार्य किया वह अद्वितीय है। भारतीय रेडियो प्रसारण की पहचान रही आकाशवाणी ने अपने 90 वर्षों की यात्रा में देश की सांस्कृतिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक विकास को सुदृढ़ करने में अमूल्य योगदान दिया है। यह केवल एक प्रसारण संस्था नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, स्मृतियों और विश्वास का प्रतीक रही है। रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में निजी प्रयासों से हुई थी, किंतु 1936 में इसे औपचारिक रूप में ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। बाद में 1957 में इसका लोकप्रिय हिंदी नाम आकाशवाणी रखा गया। संस्कृत के सुंदर शब्द का अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी। यह नाम जितना काव्यमय है उतना ही सार्थक भी, क्योंकि आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। आकाशवाणी के प्रारंभिक वर्षों में सीमित संसाधन थे, फिर भी इसने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जन जागरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनने का कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसकी भूमिका और व्यापक हो गई। देश निर्माण, लोकतंत्र की स्थापना और सामाजिक चेतना के प्रसार में आकाशवाणी ने सेतु का कार्य किया। गांवों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना इसकी उपलब्धियों में शामिल रहा। आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता रही है। भारत की अनेक भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित कर इसने देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित किया। लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, नाटक, कवि सम्मेलन और साहित्यिक चर्चाओं के माध्यम से इसने भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य किया। अनेक महान कलाकारों, साहित्यकारों और संगीतज्ञों को पहचान दिलाने में भी आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समाचार प्रसारण के क्षेत्र में भी आकाशवाणी ने विश्वसनीयता का उच्च मानदंड स्थापित किया। एक समय था जब देश के अधिकांश लोग समाचारों के लिए रेडियो पर निर्भर रहते थे। युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय संकट के समय

आकाशवाणी ने तुरंत और प्रामाणिक जानकारी देकर लोगों का विश्वास जीता। आज भी दूरदराज क्षेत्रों में रेडियो सूचना का सशक्त माध्यम बना हुआ है। मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी का योगदान अविस्मरणीय है। पुराने समय में रेडियो पर प्रसारित होने वाले गीत, नाटक और विविध कार्यक्रम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा था। विविध भारती जैसे लोकप्रिय चैनलों ने श्रोताओं के संगीत और मनोरंजन का नया संसार दिया। रेडियो सीलोन के साथ प्रतिस्पर्धा के दौर में भी आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी। तकनीकी विकास के साथ आकाशवाणी ने स्वयं को समय अनुकूल बनाया। FM प्रसारण, डिजिटल तकनीक और इंटरनेट रेडियो के माध्यम से आज यह नई पीढ़ी तक भी पहुंच रहा है। मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि बदलते समय भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आज जब दृश्य माध्यमों और सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ गया है, तब भी रेडियो की सरलता, सहजता और विश्वसनीयता उसे विशेष बनाती है। आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा केवल इस संस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक यात्रा का भी इतिहास है। इसने विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार किया। ग्रामीण भारत से लेकर महानगरों तक, बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, हर वर्ग के लोगों के जीवन में इसकी मधुर ध्वनि आज भी जीवंत है। मेरी पहली लघु कथा है मुखौटा। बरसात थम चुकी थी। गली के कोने पर जमा पानी में पीली रोशनी कांप रही थी। जरीना खिड़की के पास बैठी थी। सामने दीवार पर टंगी अपने शौहर इकबाल की मुस्कुराती तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर में वही चेहरा था जिसे दुनिया आदर्श इंसान कहती थी। पड़ोस की 12 साल की बच्ची गुड़िया ने दरवाज़ा खटखटाया। आंटी, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ बेटा, आ जाओ। गुड़िया धीरे से अंदर आई और जरीना के पास बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। थोड़ी देर बाद गुड़िया बोली, आंटी, सब लोग कह रहे थे कि अंकल बहुत अच्छे थे। जरीना के चेहरे पर उदासी आई, साथ ही आंखों में नमी आई। हाँ, सबके लिए अच्छे थे। आप क्यों रो रही हैं? गुड़िया का यह सवाल मासूम था, मगर सीधा दिल पर उतरा। जरीना ने पहली बार गुड़िया की ओर देखा। गुड़िया की आंखों में जिज्ञासा नहीं, अपनापन था। कभी कभी आंसू बाहर आ ही जाते हैं, रोकने पर नहीं रुकते बेटा। गुड़िया कुछ समझी कुछ नहीं। उसने धीमे से पूछा, क्या अंकल आपको डांटते थे? जरीना की उंगलियां कांप गई। उसने खिड़की के बाहर देखा। डांटना अगर शब्दों तक हो तो सहा जा सकता है। कमरे में सन्नाटा भर गया। गुड़िया ने मासूमी से कहा, अम्मी कहती हैं कि जो लोग बाहर बहुत हंसते हैं वो अंदर से ही बहुत अच्छे होते हैं। जरीना की आंखें भर आई। नहीं बेटा, कुछ लोग बाहर हंसने का मुखौटा पहनते हैं ताकि कोई उनका असली चेहरा देख न सके। गुड़िया चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, आंटी क्या आपको डर लगता था? जरीना के भीतर जैसे वर्षों से बंद दरवाज़ा चरमराया। हर रात दरवाजे की आहट से, आवाज़ के बदलते लहजे से, और सबसे ज़्यादा इस बात से कि अगर मैंने किसी को सच बताया तो कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों? गुड़िया ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे अंकल सबके सामने बहुत अच्छे इंसान थे। गुड़िया ने मास्क आँखों से तस्वीर की ओर देखा। तो लोग पहचानते क्यों नहीं? जरीना हल्का सा हंसी, फिर बोली, क्योंकि दुनिया चेहरों को देखती है बेटा, घावों को नहीं। इतने में बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। गुड़िया डर कर जरीना से सट गई और धीमे से चीखी, आंटी। जरीना ने पहली बार किसी को अपने करीब महसूस किया। उसने गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा। डरो मत, अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता। कभी कभी अंधेरे में ही मुखौटे उतरते हैं। बाहर फिर बारिश शुरू हो गई और भीतर जरीना की आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरी अगली लोक कथा है खाली कुर्सी। बरामदे में रखी वह लकड़ी की कुर्सी भी वैसी ही हल्की थी।

और भीतर जरीना की आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरी अगली लोक कथा है खाली कुर्सी। बरामदे में रखी वह लकड़ी की कुर्सी भी वैसी ही हल्की थी और चरमराती सी, जैसे कोई हर रोज उस पर बैठकर उठता हो। माँ, ये कुर्सी हमेशा खाली क्यों रहती है? राधा ने पूछा। माँ ने झाड़ू रोक दी। एक पल के लिए उसकी उंगलियां ठिठक गईं। उसने धीमे से कहा, तुम्हारे पापा को ये जगह बहुत पसंद थी, तो अब कोई और बैठ न जाए इसलिए? राधा ने सहजता से पूछा। मैं बैठ जाऊं? माँ ने मुस्कराने की कोशिश की, पर आंखों में हल्की नमी उतर आई। नहीं बेटा, कुछ जगह बैठने के लिए नहीं होती, याद रखने के लिए होती हैं। याद रखने के लिए? राधा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, माँ ने कुर्सी को हल्के से छुआ। जब कोई बहुत अपना चला जाता है तो उसकी कुछ चीजें हमें उससे जोड़कर रखती हैं। राधा कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो पापा यहीं बैठकर मुझे कहानी सुनाते थे? माँ की आंखें भर आईं। हाँ, और तुम्हारे बाल भी यहीं संवारते थे। राधा ने कुर्सी को ध्यान से देखा, फिर पास रखी दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मैं यहाँ बैठूंगी ताकि उनकी जगह खाली रहे। माँ ने झाड़ू एक तरफ रख दी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि राधा अब थोड़ी बड़ी हो गई है। अगली लोक कथा है चाय का कप। सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। दादाजी रसोई में खड़े चाय बना रहे थे। दादाजी, आप रोज 2 कप चाय क्यों बनाते हैं? पोते ने दरवाजे से झांकते हुए पूछा। दादाजी ने बिना मुड़े जवाब दिया, आदत है बेटा। पर आप तो अकेले रहते हैं, पोते ने आगे बढ़ते हुए कहा। 2 कप क्यों? दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ट्रे में 2 कप रखे और बाहर आकर मेज पर रख दिए, एक कप अपनी तरफ और दूसरा सामने खाली कुर्सी के पास। पोता आश्चर्य से देख रहा था। तुम्हारी दादी को अकेले चाय पीना पसंद नहीं था, उन्होंने धीरे से कहा। पोते ने खाली कुर्सी की ओर देखा, पर दादी तो अब वह रुक गया, शब्द गले में अटक गए। दादाजी मुस्कराए, मगर वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ नहीं है, लेकिन आदतें लोग नहीं जानते, वो रह जाती हैं। कुछ पल खामोशी रही। चाय से उठती भाप जैसे उस सन्नाटे को भरने की कोशिश कर रही थी। क्या आप उनसे बात भी करते हैं? पोते ने झिझकते हुए पूछा। दादाजी ने कप उठाया। कभी कभी मन ही मन पूछता हूँ, चीनी ठीक है या नहीं? पोते की आंखें भर आई। उसने धीरे से दूसरा कप उठाया और दादाजी के सामने बैठ गया। आज से मैं आपके साथ ही पीऊंगा, दादी की जगह नहीं ले सक, पर आपको अकेले भी नहीं रहने दूंगा। दादाजी की उंगलियां कांप गईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा, शायद अब चाय का स्वाद फिर से मीठा हो जाए। मेरी अगली लोक कथा है पुरानी डायरी। अलमारी के कोने में रखी पुरानी डायरी पर धूल की हल्की परत जमी थी। पापा, ये पुरानी डायरी क्यों संभाल कर रखी है? बेटे नील ने उत्सुकता से पूछा। पिता ने धीरे से डायरी उठाई, जैसे कोई नाजुक चीज हो। ये तुम्हारी माँ की लिखी हुई है, इसमें क्या है? नील ने पास आकर पूछा। पिता ने पन्ने पलटे, कुछ जगहों पर स्याही हल्की पड़ गई थी। मेरे बारे में शिकायतें और तुम्हारे बारे में सपने। नील मुस्कराया। माँ शिकायत भी करती थी? पिता भी हल्का मुस्कराए, बहुत, पर प्यार से। तो पढ़कर दुख नहीं होता? नील ने कहा। पिता की आंखें कहीं दूर चली गईं, जैसे वो मुझसे नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे बातें कर रही हो। उन्होंने एक पन्ना पढ़कर सुनाया। आज फिर वो देर से आए, लेकिन जब मुस्कराए तो सारा गुस्सा भूल गई। नील की आंखें नम हो गईं। माँ सच में ऐसा लिखती थी? हाँ, पिता ने डायरी बंद करते हुए कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी आवाज है। नील ने डायरी को सीने से लगा लिया। तो फिर इसे कभी बंद मत करना, ताकि माँ की आवाज़ आती रहे। पिता ने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन पुरानी डायरी में लिखी बातें एक बार फिर जीवित हो उठी। मेरी अगली कथा है पुराना स्वेटर। सर्दियों की सुबह थी। अलमारी खोलते ही उन्हीं कपड़ों के बीच से एक हल्की सी जानी पहचानी खुशबू बाहर आई। माँ, ये स्वेटर इतना पुराना हो गया है, फिर भी आपने इसे संभाल कर क्यों रखा है? राहुल ने स्वेटर उठाते हुए पूछा। माँ ने पलट कर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें ठहर गईं। उन्होंने धीरे से स्वेटर अपने हाथ में लिया और उसकी बुनाई पर उंगलियां फेरने लगीं, जैसे किसी पुराने स्पर्श को फिर से महसूस कर रही हों। ये तुम्हारे नाना ने अपने हाथों से बुना था, उनकी आवाज में हल्की कंपकपी थी। पर अब तो वो, कहते कहते राहुल रुक गया। उसने ध्यान से देखा, कुछ धागे ढीले पड़ चुके थे, कहीं कहीं ऊन उभर आई थी। माँ ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, अब नहीं है, फिर हल्के से मुस्कराई। लेकिन जब बहुत ठंड लगती है ना, तो ये सिर्फ शरीर को नहीं, दिल को गर्मी देता है। राहुल कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने स्वेटर को अपने गाल से लगाया। तो आज से मैं इसे पहनूंगा ताकि नाना की गर्मी मुझे भी मिले। माँ ने उसे देखा। उनकी आंखों में नमी थी, पर उस नमी में एक सुकून भी था, जैसे कोई रिश्ता धागों से अब भी जीवित हो। मेरी अगली लोक कथा है खामोशी की नमाज। रात के 9:30 बज चुके थे। हवा में बड़ी मस्जिद की अजान और कहीं दूर से आती
कड़ी पकौड़े की खुशबू घुल रही थी। जैनब बी ने अपने पुराने चश्मे को पोंछा।

और सिलाई मशीन के पास रखे कुरान पाक को धीरे से बंद किया। जैनब भी 68 वर्ष की वृद्धाएं हैं और विधवाएं हैं। उनका पोता आरिफ अब तक नहीं लौटा। आरिफ 17 साल का है और पढ़ने में होशियार। आज फिर देर कर दी, या अल्लाह सब खैर हो, जैनब बी ने मन ही मन कहा। तभी दरवाजे की सांकल बजी। जैनब बी जल्दी से दरवाजे तक चलकर पहुंची। सामने आरिफ था, पर उसके साथ माधुरी भी खड़ी थी, हाथ में स्कूल की किताबें, माथे पर चिंता की लकीर। सलाम नानी, आरिफ ने कहा। माधुरी को मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइब्रेरी बंद थी, तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जैनब बी ने दोनों को ध्यान से देखा। माधुरी ने सिर झुका लिया। आओ बेटी, उन्होंने धीरे से कहा। घर की देरी पर मजहब नहीं देखा जाता, बस इरादा देखा जाता है। आरिफ ने राहत की सांस ली। रसोई में चूल्हा धीमे धीमे जल रहा था। जैनब बी ने 2 कप चाय चढ़ाई। चाय की महक फैलने लगी, जैसे दीवारों ने भी लंबी सांस ली हो। तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज तो नहीं होगा, जैनब बी ने माधुरी से पूछा। नहीं अम्मा, पर माँ डरती है लोगों की बातों से। कहती है मजहब की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। जैनब बी मुस्कराई। दीवारें तो दिल के अंदर होती है बिटिया, मजहब तो बस राह दिखाता है, बंद नहीं करता। माधुरी की आंखें भर आईं। पर नानी, आरिफ बोला, लोगों की बातें कभी नहीं रुकती, वो तो हमारे स्कूल तक मैं ताना मारते हैं। तो क्या सच भी चुप हो जाए आरिफ? जैनब बी का स्वर सख्त हुआ। तुम अगर किसी की मदद करो और वो तुम्हारी मजहब को पूछे तो क्या हाथ पीछे खींच लोगे? आरिफ चुप। माधुरी की आंखें अब जैनब बी के चेहरे पर टिकी थीं। थोड़ी देर बाद चाय तैयार हुई। जैनब बी ने दोनों को चाय दी और कहा, तुम लोग पढ़ो, मैं जरा अल्लाह की इबादत कर लूँ। आरिफ ने माधुरी की ओर देखा। पढ़ें? माधुरी ने सिर हिलाया, हाँ। पीछे से जैनब बी की आवाज़ आई, और सुनो, जब जिंदगी के इम्तहान में खड़े उतरोगे तब मैं तुम्हारी दोस्ती को दुआ समझकर कबूल करूँगी। मजहब से नहीं, इरादों से इंसान का चेहरा रोशन होता है। एक चुप सी रात में एक बूढ़ी मुस्लिम औरत ने 2 बच्चों को सिखाया कि मोहब्बत, दोस्ती और समझदारी मजहब से ऊपर होते हैं, और खामोशी की भी अपनी एक नमाज होती है। मेरी अगली लोकथा है स्त्री निर्वासित देह निर्विरोध अस्तित्व। बड़ी दीदी की विदाई में माँ बहुत रोई थी। नहीं इसलिए कि बेटी जा रही है, बल्कि इसलिए कि अब वहाँ जा रही है जहाँ से लौटना केवल हड्डियों के सहारे होता है, अगर होता है तो। पिता ने हमेशा कहा, बेटियाँ पराया धन होती हैं, जहाँ भेजा जाए चुपचाप चली जाएं। बड़ी दीदी चुपचाप चली गई, फिर एक दिन चुपचाप लौटी। पैर में प्लास्टर था, चेहरे पर नहीं। सारे मोहल्ले ने देखा, कुछ ने कहा, दुख तो है लेकिन पति है भगवान समान। कुछ ने यह भी कहा, क्या किया होगा उसने। दीदी फिर चली गई, इस बार बिना बारात बिना बैंड, केवल चुप्पी और कुछ कपड़ों के साथ। बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने कहा, जिस घर की दाल रोटी खा ली उसी की करनी काटे। दादी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक स्कूल में सहायक की नौकरी पकड़ ली। छोटे बच्चों की दीदी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक स्कूल में सहायक की नौकरी पकड़ ली। छोटे बच्चों को हंसना सिखाने लगी, जबकि खुद बोलना भूल चुकी थी। माँ चुप रहीं, उनकी चुप्पी में संतोष नहीं, केवल एक बर्फीली हार थी। और एक दिन जब मोहल्ले की एक और बेटी ने पलकों में सिंदूर भरा तो माँ ने दीदी की तरफ देखा। दीदी की आंखों में रोशनी थी, न आंसू, सिर्फ एक निर्वासन था जिसे तो उन्होंने स्थायी निवास बना लिया था। स्त्री जो लौट आई थी लेकिन कभी घर नहीं आई। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम शब्द चित्र, जिसके अंतर्गत आज हमने सुना पवन शर्मा का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत गंगा। कार्यक्रम गीत गंगा सुन रहे सभी सुधी श्रोताओं को दुर्गेश नामदेव का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुधी श्रोताओं का आज के गीत गंगा के इस नए अंक के साथ। जी हां श्रोताओं, कहते हैं कि इसलिए खड़ा रहा

कि मुझे तुम पुकार लो। जमीन है ना बोलती ना आसमां बोलता, जहां देखकर मुझे बेजुबान ना समझो। नहीं जगह कहीं जहां ना अजनबी गिना गया, कहां कहां ना फिर, कहां कहां ना फिर दिल और दिमाग का टटोला मैंने। जमीन है ना बोलती ना आसमान बोलता, इसलिए खड़ा रहा कि मुझे तुम पुकार लो, मुझे तुम पुकार लो।

फिल्म खामोशी हेमंत कुमार। इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बस पुकार लेना चाहिए।

हां, पुकारने के बाद बस इंतजार होता है उस पुकार का, जो सामने से आवाज आए, बन जाता है एक माझी और माझी की धूल झाड़ दी जाए, जो बीत गया उसे बिसार दिया जाए, अपनी उम्मीदों को एक नया परवाज दिया जाए, अतीत को कमजोरी ना बनाया जाए, उसे एक नया ही आगाज दिया जाए, जो बीत गया उसे क्यों ना बिसार दिया जाए, अंधेरों से निकलकर रोशनियों को आवाज देना भी जरूरी है, ढंग

अपने आप बदल जाता है, अपनी शैली अपने आप को मिल जाती है, एक नया अंदाज मिलता है। जो बीत गया बस उसे बिसारना बाकी है, माझे को आवाज लगाना बाकी है।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

कार्यक्रम गीत गंगा का लुत्फ ले रहे हैं आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ, और मैं हूं आपका अपना रेडियो मित्र दुर्गेश नामदेव। श्रोताओ, आज की गीत गंगा में हमने बात की पुकारने की, एक माझी की, ऐसा माझी जो बीत गया उसे बिसारने पर लगा है, अपनी उम्मीदों को एक नया परवाज देने लगा है, अतीत को कमजोरी ना मान एक नया आगाज देने लगा है, जो बीत गया उसे बिसार देने लगा है, अंधेरों से निकलकर रोशनियों को आवाज देने लगा है, ढंग अपने बदल अपनी शैली को एक नया अंदाज देने लगा है, जो बीत गया उसे बिसार देने लगा है। माना कि ये सफर दुश्वारियों से भरा क्यों ना हो, ना घबरा इन चुनौतियों से, तो खुद उन्हें आवाज दे, आगे बढ़, रख हौसला, आशा का दामन थाम ले, सबको नई मिसाल दे, जो बीत गया उसे बिसार दे। अपने पर आने वाले पत्थर से तू इमारत नई उसार दे, बोता चल उम्मीदों के बीच, बंजर धरती को तू एक नई बहार दे, बंजर धरती को तू एक नई बहार दे।

70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।

कार्यक्रम गीत गंगा का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के साथ। बात एक माझी की, माझी अपनी धूल साफ कर रहा, नए सपनों को नए पर दे रहा, नई उड़ान भर रहा, दुकानों की बना एक पोटली सुखों के समंदर में उसे उतार दे रहा, जो बीत गया उसे बिसार दे रहा, उसे बिसार दे रहा।

फिल्म बात एक रात की, मनाडे का स्वर। श्रोताओं, अल्फाज कुछ ऐसे बिखरे आज, अल्फाज कुछ ऐसे बिखरे आज जैसे बादलों से पानी बरस रहा। अंबर ने लिखी मौसम की किताब, धरती गा रही कहानी। यूं तो सूरज भी है बेकस देखने को, रब की ये अदा पुरानी। हर रंग में छुपी है दास्ता, खामोशी की ये जुबानी, खामोशी की ये जुबानी।

श्रोताओं, एक बात और ख्याल रखिएगा, जहाँ भी जाएं पानी पीकर ही जाइएगा। धूप बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका ख्याल हमारा ख्याल है। हम आपको बेहद चाहते हैं। हाँ, आपसे बस यही कहेंगे, चिड़ियों के लिए पानी ज़रूर रखें, पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है ना। तो चलिए, इस बात के साथ ही और इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत गंगा यहीं समेटते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं श्रोताओं, कुछ ही देर में हम सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। तब तक इसी गीत का आनंद लेते रहिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में

0: सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति

0: नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहाँ वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला

0: सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ते ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.
4: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the Orchidarium and flag of pink vases for the women

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा का ये छिंदवाड़ा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म का नाम है एक गांव की कहानी, तलत महमूद।

फिल्म एक गांव की कहानी। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। संगीत निर्देशन सलील चौधरी का था, शब्द रचना शैलेंद्र की। अब सुनिए एक और बार तलत महमूद का स्वर, फिल्म जहां आरा में।

0: फिल्म जहां आरा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और तलत महमूद का स्वर।
1: जगत भर की रोशनी,
0: अब सुनिए हरीश चंद्र तारामती का गाया। जी हाँ, ये बड़ा ही खूबसूरत नगमा, हरीश चंद्र तारामती।

सूरज रे जलते रहना, हरीशचंद्र तारामती फिल्म से चुना गया ये गीत। श्रोताओ, 1963 में आई थी फिल्म हरीशचंद्र तारामती। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना प्रदीप की थी। सुनिए फिल्म संगीत की ये अगली प्रस्तुति।

0: डोले ओ डोले ओ जब से मिली तुझे अखियां जियारा डोले रे डोले ओ डोले।
1: फिल्म अमानत का ये गीत हेमंत कुमार के साथ गीता राय, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन शैलेंद्र की रचना है।

0: ले उदो ले उजब चन ले
1: फिल्म तलाश सचिन देव बर्मन का संगीत निर्देशन मजरूह की शब्द रचना
2: रुकी पलक है
1: मन्ना डे

श्रोताओं, फिल्म तलाश का ये गीत सचिन देव बर्मन का संगीत निर्देशन, मजरूह की शब्द रचना, मन्ना डे का स्वर,

अगली प्रस्तुति फिल्म जंजीर। कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन, गुलशन बावरा की

मन्नाडी के स्वर में अभी आप सुन रहे हैं जंजीर फिल्म का ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन, गुलशन बाबरा के शब्द।

अपने रंग हजार। इस फिल्म का ये गीत सुनिए, किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर का है स्वर। श्रोताओं, इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, सुबह के 9 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब हम सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए और इसी गीत का आनंद लेते रहिए।

सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

गजनी फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की कंपोजिशन में, युवराज फिल्म से, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाज़ों में गुलजार के बोल।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं टशन फिल्म से, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में, कौसर मुनीर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतज़ार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतज़ार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतज़ार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, तुम्हारी सुलूफ। इस फिल्म से रोंकिनी गुप्ता की आवाज़ में शांतनु घाटक का म्यूजिक और लिरिक्स।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, जब हैरी मेट सेजल। इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।
4: कोई

करण के पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल

2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

जिमी काफी विश्वास रखते थे और इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

और फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

और फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
1: भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य धार जिले में नौतपे के तपिश होने से आमजन हलाकान है। भीषण गर्मी के चलते जिले में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वे किसान आगामी खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। जिले में इस साल 5,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का और शेष रकबे में मूंग, उड़द, मूंगफली आदि फसलें शामिल हैं। धार जिले में भी वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन पूर्व जिले में 10 दिवसीय कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तैयार किए गए विशेष कृषि रथ को केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर तथा कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए तैयार किए गए 13 कृषि रथ प्रतिदिन 4 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रगति पर है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई खरीदी 28 मई तक चलेगी। जिले में इस साल 250 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से अब तक 229 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी 25,435 किसानों से की जा चुकी है। जिले में इस साल 44,913 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 30,510 किसानों को स्लॉट बुक हुए हैं। धार जिले में जनगणना 2027 का पहले चरण का कार्य चल रहा है। 31 मई तक चलने वाले पहले चरण में प्रगणकों ने समय से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जिले में 7,17,530 मकान होने के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। काम पूरा होने के बाद क्रॉस चेकिंग का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। धार जिले में आमजनों की सुविधा और आधार सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से धार के प्रधान डाकघर सहित विभिन्न डाकघरों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल लिंकिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिए गए फैसले के बाद से सभी ओर उत्साह का माहौल है। भोजशाला के पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। उन्होंने माँ वाग्देवी की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धार में माता सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा, राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। धार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जिले भर में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर जल स्रोतों के पूजन और गंगा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार जिला इस अभियान में प्रदेश में 6वें स्थान पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। धार जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प दिलाया गया। धार के प्रसिद्ध शिल्पकार और संगीतज्ञ रघुनाथ राव कृष्णराव फड़के कला अवदान को समर्पित 3 दिवसीय 11वां पद्मश्री फड़के संगीत समारोह गतिनोर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। गायन, वादन और नृत्य की संगीत त्रिवेणी का संगम माने जाने वाले फड़के संगीत समारोह में शास्त्रीय नृत्य, गायन और वादन की नई विधाओं से संगीत प्रेमी परिचित हुए। श्रीलंका नृत्य दल की प्रमुख डॉक्टर अंजलि मिश्रा को इस साल पद्मश्री फड़के कला सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं अंतिम दिन कोलकाता की ख्याल गायिका श्रीमती पियाली चटर्जी ने गीत और भजन प्रस्तुत किए। धार जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोपाल केंद्र से कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसके अंतर्गत आज हमने सुना धार जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं श्रोताओं, प्रस्तुत है सुगम संगीत।

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 28 मई और 29 मई सन 2026 को खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 28 मई और 29 मई सन 2026 को खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र और लुत्फ ले रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत में अभी आप स्वर सुन रहे हैं कैलाश खैर का।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700

0: 0001-4242 पर
1: 8700-001-4242।
2: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
3: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
2: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
3: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
2: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
3: हाँ,
4: श्रोताओं, अंतिम प्रस्तुति और संदेशों के साथ ही आज का कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के

0: छिंदवाड़ा।
1: हाँ
2: श्रोताओं, अंतिम प्रस्तुति और संदेशों के साथ ही आज का कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा,
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी ठीक वैसे ही ना, जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी,
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।

0: जी, श्रोताओ, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी,
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष हैं सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी
0: ये 1 से 2 सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी,
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओ यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: मंकी, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड,
2: वेरी नाइस,
3: कैमल, जिराफ एंड सो ऑन।
2: ओ वाओ, सो हियर इज अ चाइल्ड लाइक यू हु वांट्स टू गो टू अ जू। नाउ लेट्स रिसाइट दिस पोएम एंड यू ऑल रिपीट आफ्टर मी। रेडी?
3: रेडी।
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes.

0: and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल
5: ठीक है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।

0: राजा जोरावर सिंह। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
0: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर

0: काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
1: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
0: जी।
1: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
0: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
1: बिल्कुल,
0: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
2: जी।
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
1: जी।
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
8: बिल्कुल।
7: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
8: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
7: लेकिन जरा होशियारी से।
8: जो हुकुम सरकार।

0: Canavar! Bakalım! Tüm çağrı taraf se gir çüke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest!
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम।

0: हमारी बहादुरी। फौजियों
1: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
1: जी
2: हाँ। छोड़ो मुझे, हाथ पकड़ो मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश शाबाश सालार जंग, मैं खुश हुआ, तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
3: हुजूर।
2: अच्छा तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियों चलो इसको, चलो
2: मुझे, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
2: अप्पा ये नहीं हो सकता।
6: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
2: ये नामुमकिन है।
6: वाय
2: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
6: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
2: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांध कर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
6: Actually, you are a fool.
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
5: काला पानी की सजा?
4: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
5: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
4: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
5: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी की स्थानीय प्रसारण सेवा के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं श्रोताओं, अब हम सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। लिए चलते हैं आपको मुंबई।

दुर्गा माँ, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजों में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा था और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश जॉगर्स पार्क फिल्म से, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी। जंजीर फिल्म से ये गीत सुनिए।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है

0: आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

हाल क्या है जनाब जी। हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और वेडनेसडे फिल्म से इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजॉय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: चित्रा सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना

0: ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

आशा भोसले भूपेंद्र की आवाजों में एतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

आपकी कसम इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3?
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यह है विविध भारती, सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफ़र। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारे शब्द, काफ़ी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुँच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना।

मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज़ में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे को एक दूसरे का अभिवादन किया है, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और उसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहाँ प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां हैं। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेमी युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफ़र का इंतज़ार है। बिल्कुल, इंतज़ार ख़त्म हुआ और सफ़र शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कंपकपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आँखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार ज़रूर अब तक पहुँचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की टीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीज़ों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ, बिल्कुल, हमें हर रोज़ अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो ज़िंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर, अधूरे सपने और थोड़ा सा दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत संदेशों के लिए। फिलहाल इस गीत के साथ ही मैं आपको एक काम भी दे रही हूँ। जी हाँ, आपके लिए एक पहेली है, पहेली नहीं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं मुझसे, और वो ये है कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफ़र में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आज़ाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज़ देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज़ दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देख कर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंकी की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियाँ पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल। और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग के ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय, कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है, और नमकीन लस्सी भी मैं ज़रूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। गहरी सांस लेने

व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफ़ी लंबा मैसेजेस और काफ़ी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, मेंटली इमोशनली। तो ज़रूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहाँ आप तक पहुँचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले, अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था, उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफ़र में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही ख़ास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुज़ुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने

सुरीला सफ़र में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही ख़ास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुज़ुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसे ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कभी आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है, प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है, बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहाँ आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सब ने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूँगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में, जो गीत हमने आपको सुनवाया, उसमें जो नज़र आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर, जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए, और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि खो जाएं हम। तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो ज़रूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन हैं, ये ज़रूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें

ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की ये जो सब बातें आज है वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आँखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आँखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आँखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहाँ हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में खयाम का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूँगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं, साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो, इंट्रो म्यूज़िक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिख कर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूँ मैं अक्सर। वहाँ चीड़ के ऊँचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियाँ साएं साएं करती है, वो आवाज़ सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं, खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें, साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, मुझे बताएं।

रात कली ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर ये फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया,

थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ, और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी। जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है, वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।
1: मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार का गाया हुआ है, बोल मजरू सुल्तानपुरी के आर डी बर्मन का संगीत है। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, लीजिए इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत का संगीत दिया है, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया जिसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वह मलिन दिखती है और ज्ञान से फिर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। वहीं दूसरे दिन नाथुला दर्रे की यात्रा के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे के आखिरी दिन वे सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी, जिसके साथ सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉ. नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इनके कार्यों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा की 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस परिक्रमा की शुरुआत कल गंगा दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने रामघाट पर पूजन कर की थी। ये परिक्रमा 23 साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ही मां शिप्रा के संरक्षण के लिए शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व

0: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनों की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है, जिसके तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेरिया ने उनका स्वागत किया। अब रुख करते हैं मौसम का। इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री और नौगांव में 46.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं और मौसम विज्ञान विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे। झाबुआ के ग्राम रंभापुर के हाट बाजार में संभाग स्त्री चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल हासिल किए हैं। खंडवा के मानधाता के आरक्षक रवि सोलंकी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब रहे महाराष्ट्र निवासी युवक की जान बचाई और आगरमालवा जिला अस्पताल में तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन

0: प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण

0: उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी

0: और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज़्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसी अपने आप बाहर निकल के आ जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: हाँ, ये तो बात है ना। देखिए दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
0: महसूस करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी
1: क्या बात करने वाली है, आज
0: क्या बोलने वाली है,
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
0: देखिए जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया, तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के, राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है, तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर।
1: मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कह कर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
0: वंदागिनी मैम देखिए, वंदागिनी जी क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना ये हर घर में होती हैं।
1: जी,
0: कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी, तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीज,
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
0: बिल्कुल,
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं।
0: हम घर पर हैं। और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है,
0: आनंद भी आता है, और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना, तब भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को
1: अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
0: कहने का मतलब खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
0: तो देखिए हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: हाँ, लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते हैं,
0: आप बता सकते हैं कि फलाना भी कान का कच्चा है।
1: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है हमारे अपने घर में। कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हो उसका मतलब।
0: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी आए और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाग्नि जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्मसुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना, या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते हैं।
0: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग। पानी चलता रहता है नलों से लगातार, आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर घर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं, तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि। और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं, या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन

0: अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं, और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचें कि कोई करे या नहीं, मुझे तो ज़रूरतमंदों की सहायता करनी ही है, और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूँ, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए, आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा। वो बिल्कुल आपको, आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
0: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल, तो सही कहा। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे, तो बच्चे पूरा हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं।
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल

0: पकड़ के सोने लग जाते हैं, नहीं हमें
1: हाँ वो
0: चाहिए।
1: सीखते हैं ना, जैसा
0: बिल्कुल
1: दे आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना।
0: बिल्कुल
1: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा, कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है,
0: जी
1: करके तो देखिए। कहते भी हैं
0: बिल्कुल
1: कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं, और सुबह
0: बिल्कुल
1: उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
0: बिल्कुल
1: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में
0: बिल्कुल
1: दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि
0: बिल्कुल
1: अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही ते नर न घनेरे, है
0: क्या
1: ना।
0: बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतज़ार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की ज़रूरत होती है। क्या बात
1: क्या
0: है, बहुत
1: बात
0: सुंदर
1: है,
0: बात लिखी है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना
1: सटीक है ना मंदाकिनी
0: हाँ
1: जी
0: बिल्कुल
1: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना। तो ये
0: बिल्कुल
1: सफल, आप हंस रहे हैं ना इसी बात पर कि मंत्री ने बस छेड़ दी बात, है ना।
0: हाँ। और ये
1: तो
0: ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
1: जी
0: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
1: बिल्कुल।
0: है
1: तो
0: ना।
1: चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं।
0: हाँ
1: हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत की उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
0: तो राधिका घई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।
1: जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई। हाँ,
0: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
1: जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
0: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉप क्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया।
1: जी, और कंपनी की खासियत यह थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहां ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉप क्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉप क्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
0: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, CMO एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और CEO इंडिया अवार्ड 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए

0: प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं,
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे की उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास कर लेते।
1: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: बिल्कुल,
0: कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई भी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता है।
1: तो सबसे पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी बातों में डिगा नहीं सकते, जिसे कहते हैं वो।
0: अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपके जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं, ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वहीं एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो

0: इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी ज़रूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी ज़रूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए, ऐसे
1: मतलब
0: लोग जो होते
1: गोपनीयता जो
0: हैं,
1: बातों की होती है
0: हाँ
1: दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं,
0: हटा
1: खंडित
0: देते
1: कर
0: हैं,
1: देते
0: मतलब
1: हैं।
0: दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और
1: हाँ
0: अपना अपना
1: मतलब
0: पाने के
1: निकाल
0: लिए,
1: लेते
0: मतलब
1: हैं।
0: निकालने के लिए, अपने को
1: हाँ
0: सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे को, दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं,
1: गिरा
0: तो वो
1: देते
0: चीज़
1: हैं
0: नहीं होनी
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना, आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते
0: जी,
1: हैं।
0: सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजें। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मज़ेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
1: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहाँ ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी

0: अब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीज़ें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे के इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जन्मासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में।
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना।
1: सादगी से वो जन्मासा होता था, दिखावटी नहीं होता।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे। और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की, नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना, वो लड़की वालों को करना पड़ता
1: थे। बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गाँव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गाँव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जन्मासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी, बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल, आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहाँ लेके जाओ जन्मासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं। लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी। कोई नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जन्मासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा। इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जन्मासा कहते हैं। यहाँ पर वधू पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधू पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे, समधी, दूल्हे के पिता, फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था। लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है। जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय ना मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है। यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीनशेड से ढका था जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्मासा ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है। लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्मासा वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बाराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्मासा भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती।

0: बिल्कुल,
1: और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
0: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना
1: हाँ
0: हर चीज प्रोवाइड कराना,
1: बिल्कुल।
0: हर पूरा एक
1: और
0: जिम्मेदारी
1: बड़ा
0: बन
1: मज़ा भी
0: जाती
1: आता
0: थी।
1: था कि भाई
0: हाँ
1: अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूड़ी गरम क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं
0: मिल
1: परसा
0: रहा
1: जा रहा है, तो
0: है,
1: इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे
0: चूहलबाजी भी होती
1: चूहलबाजी
0: थी।
1: टाइप की भी
0: हाँ
1: होती थी, तो बड़ा
0: बिल्कुल
1: यादगार दिन है वो। अब
0: बिल्कुल।
1: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
0: हाँ अब
1: सब
0: वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि
1: हाँ
0: होटल भी दूर दूर होते हैं
1: बिल्कुल
0: और अभी कई चीजें बदल गई हैं ना,
1: बदल गई।
0: वो
1: होटल में एक साथ
0: चीजें
1: खाना
0: शादियां
1: खा
0: भी
1: रहे
0: होटल
1: हैं
0: में हो गई हैं, घरों
1: जी
0: में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहां बैठकर गीत गाए जाते थे,
1: बिल्कुल,
0: पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए
1: सारे
0: जाते थे,
1: कार्यक्रम।
0: तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं
1: लेकिन मुझे
0: जिसका।
1: तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल याद
1: तो
0: आते हैं।
1: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर
0: हाँ फिर
1: बाकी
0: बात
1: संदेश
0: करते हैं।
1: लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासी में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासी में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर लिया, अंधेरा था चारों तरफ तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही, सही बात है। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहाँ आसरा कर लिया।

0: पर बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए।
1: बिल्कुल, और जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए, तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है, पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ जनजान अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, हाँ। तो वो तो किसी और का बगीचा है।
0: हाँ, हाँ।
1: अब आम लगे हैं, हाँ। अब बराती लगे तोड़ने में,
0: हाँ, हाँ।
1: अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं। और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
1: आज फिर से ताज़ा हो गए ताज़ा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: लखी सहेली।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस
1: धन्यवाद।
0: मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है।
0: जी
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट। और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो
0: बात
1: थैंक
0: है,
1: यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट
0: अपने
1: फील।
0: ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बैक।
0: यहां एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी
1: पंडित अमरनाथ
0: गायक
1: जी,
0: पंडित अमरनाथ जी से
1: जी नहीं,
0: अलग
1: अलग
0: हैं।
1: हैं, बांसुरी वादक
0: जी बिल्कुल,
1: पंडित
0: बांसुरी
1: अमरनाथ
0: वादक
1: जी,
0: पंडित
1: बांसुरी
0: अमरनाथ
1: वादक
0: जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से
1: जी
0: भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी। पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की,
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफ़िकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। अब बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है,
0: जी
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफ़ी है।
0: और इन
1: उन
0: रागों में वाद्य
1: पे
0: वृंद
1: वाद्य
0: बनाना
1: वृंद बनाना, वो भी
0: और
1: उनके
0: भी बड़ा
1: चलन के
0: काम
1: आधार
0: है।
1: पे।
0: जी
1: अब सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ
0: ये मायने रखता
1: 80
0: है।
1: आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने हैं।
1: नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन्स से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नी सा और SRGM, सारे गामा
0: अच्छा,
1: पा धा,
0: दोनों नोटेशन कर देते वो।
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे।
0: जी,
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे 3 भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम 3 भाई हैं और 2 म्यूज़िक में हैं, 1 म्यूज़िक में नहीं है। तो
0: जी
1: मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई।
1: बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूं कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता।

0: बचपन में बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी.
1: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए. उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुम्बस.
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
1: जी,
0: और भी बदमाश
1: और
0: होता
1: भी.
0: था.
1: तो आप क्या कारनामे करते
0: हम लोग करते थे बचपन में काफी.
1: शर्मा बता
0: हाँ, थोड़ा सा
1: रहे
0: शर्मा हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे.
1: थे. बगीचों से आम चुराए, चोरी से
0: बहुत
1: फिल्में
0: चुराए,
1: देखी है.
0: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल
1: ओहो हो,
0: को भी थोड़ा परेशान किया है.
1: थोड़ा
0: हाँ. इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी.
0: घर, शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया
1: अरे बाप रे.
0: था.
1: फिर
0: फिर पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता
1: लेकिन
0: दूं,
1: किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो
0: आपने
1: खतरनाक
0: पकड़
1: वाला
0: लिए,
1: किया होगा.
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे.
1: जी जी
0: मैं
1: जी
0: बचपन में भी नहीं पकड़ा था, मुझे तो टीचर ने. इसको कर्मा बोलते.
1: अच्छा. वापस आ गया.
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम में. हाँ,
1: जी
0: तो बदमाशी की है सर.
1: हाँ.
0: हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था.
1: अच्छा.
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट
1: और जमाना भी सख्ती का
0: थे,
1: था.
0: बहुत ज़्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज़्यादा. उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे
1: कहीं और पहुंच
0: नहीं.
1: गए.
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए,
1: जी
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं बचपन में.
1: हाँ.
0: और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको, अगर पता चल गया
1: तो क्या
0: तो
1: हाल
0: बाप
1: होता.
0: रे, दुनिया अलग और मैं
1: कितना
0: अलग.
1: सख्त अनुशासन. आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही.
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था,
1: जी
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं हैं. मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ.
1: जी ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा.
0: वो, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का. जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है.
1: क्या प्यारी बात बोली है. जी
2: रंगी पर.

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है। मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते हैं, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल
1: यूज नहीं करते।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी
1: है। क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे

0: मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे। वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के, सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के शुरू से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह
0: तो सा सा सा रे गा मा पा दा नी सा नी रा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच। अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की नींद
0: चार
1: है,
0: 4:30 बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी,
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया। फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके। उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज। वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में। तो वो माहौल वैसा था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो

0: सारी रात जागना है
1: पूरी सारी रात जाग गए
0: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
1: सुबह का शेड्यूल तय है, पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी दोस्त, सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे, फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
0: अनुशासन
1: से, रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
0: क्या
1: पर
0: बात है।
1: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूँ यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
0: जी,
1: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी
0: जी,
1: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
0: जी,
1: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
0: बिल्कुल,
1: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
0: बिल्कुल,
1: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
0: बिल्कुल,
1: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
0: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
1: जी,
0: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
1: जी,
0: का।
1: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
0: जी,
1: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
0: जी,
1: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
0: जी जी
1: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
0: जी जी जी
1: इसको ऐसे बजाते हैं,
0: समझ गया।
1: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
0: हाँ,
1: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं,
0: जी जी जी,
1: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
0: जी,
1: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
0: हमेशा
1: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
0: हाँ,
1: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
0: जी।
1: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का होल है
0: जी,
1: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
0: उस तरह के,
1: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
0: जी जी
1: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग
0: जी।
1: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
0: जी, बिल्कुल,
1: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ,
0: हाँ बिल्कुल,
1: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का
0: हाँ, नोट है, बिल्कुल है,
1: ठीक है
0: आखिर में,
1: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
0: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
1: हमने तो बचपन से देखा है
0: जी,
1: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए,
0: आप माध्यम है,
1: आप अपने आप को मत समझिए कि आप भगवान है
0: जी,
1: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ

0: रहा होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है। मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
1: जी, तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं लाया
1: कृष्णा
0: इसलिए
1: बांसुरी
0: हूँ,
1: बजाइए
0: मैं
1: जी,
0: लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे
1: चले।
0: हमारे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा।
1: क्या प्यारी बात
0: हाँ,
1: है।
0: ये कि मेरे फ्लूट किट में रहता है।
1: जी।
0: अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है।
1: जी
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
1: हाँ है
0: है ना।
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
1: जी।
0: पिताजी का भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे। वो टेक्निकली वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। अब
1: जी
0: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: है
0: देखना पड़ता है।
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ।
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं
0: मैं
1: फिर
0: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।
0: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह, तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी जी जी
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है

0: पारस जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी
1: जी।
0: एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कुछ सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता
0: होता
1: है,
0: है जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने उस वक्त। क्या था वो 5 साल की एज में, वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी जी जी
1: उस वक्त वैसा नहीं था, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफ़ी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे,
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक गजब।
1: वो ये आशीर्वाद है
0: जी जी जी
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
0: उनके सवाल पीने भी जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त, म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से, मतलब सुनने में और करने, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर के में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्यौहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज़्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी, तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो,
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं, तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा
0: जी जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता,
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का,
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना
0: जी,
1: तो तब का सुना हुआ है,
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वो भी मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूं, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूं, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
1: हुलिया इरे कन्हाई,
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
1: जी
0: वैसा था। तो फिर ऐ दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
0: हाँ,
1: फिल्म
0: रजिया
1: का
0: सुल्तान,
1: गाना,
0: तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल
0: ओ हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम।
1: जी
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा
0: बहुत शौक।
1: क्या बात है,
0: एंड आई वॉज दी बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम,
1: तो
0: यस।
1: आप बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज़्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे?
0: था,
1: अच्छा,
0: ऑलराउंडर ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात है,
0: था
1: तो फास्ट बॉलर थे,
0: फास्ट बॉलर लाइक अ शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी,
0: नहीं।
1: लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि अब जब खेलते थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर
0: फिर
1: बस
0: खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
1: डरते डरते,
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो,
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगाया कहाँ।
1: हाँ
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
1: बस
0: ही गए बस।
1: जुनून के तहत खेल
0: हाँ,
1: रहे हैं।
0: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले,
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है और उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसा रहता था, तो दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो
1: ये
0: मजाक,
1: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
0: हाँ,
1: होगी।
0: महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का सवाल है।
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस,
1: फिर वापस ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते
0: हाँ, स्टूडियो चलते हैं ना
1: स्टूडियो
0: तो
1: चलते
0: मजा
1: हैं। आकाशवाणी के गलियारों से
0: आता
1: जुड़ी यादें बताई,
0: है।
1: पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: हाँ, वहाँ पे
1: उनके
0: क्या
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा, हाँ
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ
0: जब हम उनके साथ जाते थे, तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त। तो उनके साथ जाने का एक अलग मज़ा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज़्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था तो उनके साथ पूरा, अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए, तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे, तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है,
1: हाँ, कंपोजिशन।
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल,
0: तो उस वक्त क्या होता था सर, कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ, तो

0: जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मज़ा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीज़ें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी,
1: जी
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते,
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना, और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो,
1: जी
0: तो पूरे एक हमारा चक्र घूमता
1: चक्कर
0: था
1: लगता
0: तो वहाँ फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। वो जो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो, और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए, तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं, तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
1: चेंजेस
0: म्यूजिक
1: अकॉर्डिंगली।
0: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली, एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था उनके, जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्ज़ाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज़्यादा फीलिंग से ज़्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए
1: इतने सारे लोग
0: इतने
1: हैं।
0: सारे लोगों के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज़्यादातर,
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था।
0: वही था वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

तक रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में, सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

अब इतना भी न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम है।

रात ये हो जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत, आती है तो आ जाए मौत बेशक, कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें मुंबई केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों वो कहते हैं ना, आवाज़ का रिश्ता दिल से होता है और दिल से निकली आवाज़ हमेशा दिल तक पहुंचती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त आंचल जाओ, लेकर आई हूं आप सभी के लिए आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युवाणी। तो चलिए करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमारी आज की इस रोचक चर्चा के साथ। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है, समावेशी भारत की। समावेशी भारत का अर्थ है ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अवसर मिले, चाहे वह गरीब हो, महिला हो, किसान हो, दिव्यांग हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो या किसी भी समाज से जुड़ा हो, विकास का लाभ सब तक पहुँचे। क्योंकि एक मजबूत देश वही होता है जहाँ कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे। मित्रों, इसका उद्देश्य सभी लोगों को समान अवसर देना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, गरीब और वंचित वर्गों का विकास करना और डिजिटल और आर्थिक रूप से हर नागरिक को जोड़ना है। यह पहल नेशनल ट्रस्ट की एक पहल है। सरल शब्दों में कहें तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही समावेशी भारत की पहचान है। दोस्तों, हमारे देश में आज भी कई लोग गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, डिजिटल सुविधाओं की कमी और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर समाज का एक हिस्सा पीछे रह जाए तो देश पूरी तरह प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे। दोस्तों, NPE सन 1986 में समावेशी शिक्षा की वकालत इस प्रकार की गई थी कि इसका उद्देश्य विकलांगों को सामान्य आबादी के सभी स्तरों पर समान भागीदार के रूप में एकीकृत करना है, ताकि उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार किया जा सके। और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। समावेशी भारत की प्रमुख पहलों में डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुलभ भारत अभियान। और मित्रों, देश के युवा समावेशी भारत के सबसे बड़े भागीदार हैं। यदि युवा शिक्षा प्राप्त करें, डिजिटल रूप से जागरूक बने, समाज में समानता फैलाएं, ज़रूरतमंदों की मदद करें, तो भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बन सकता है। और समावेशी भारत केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक सोच है, ऐसी सोच जिसमें हर नागरिक को सम्मान, अवसर और अधिकार मिले। जब देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तभी भारत वास्तव में मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनेगा। आइए मित्रों, हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां कोई पीछे ना छूटे और विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी के साथ समाप्त होती है हमारी आज की ये बात। चलिए दोस्तों, जैसा कि अब हम जानते हैं, आकाशवाणी सन 1936 में स्थापित हुआ था और आज वर्ष 2026 में आकाशवाणी अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी युवा श्रोता पल्लवी ध्रुवे। आइए सुनते हैं इनके साथ बातचीत।
1: रेडियो आकाशवाणी, आकाश से आने वाली आवाज़, यह शब्द सुनते ही मन के किसी कोने में

बीते दिनों की मधुर यादें जगा देती है। जब रेडियो श्रोताओं का हमसफर था और जो केवल यंत्र नहीं भावनाओं और संवेदनाओं का संगम था। आकाशवाणी ने राष्ट्र को विशिष्ट सेवा प्रदान करते हुए गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा पूर्ण की है। 8 जून 1936 से शुरू हुआ भारत में रेडियो प्रसारण का यह सफर गरिमा, जिम्मेदारी और इस समर्पण भाव से आज भी जारी है। आज भी आकाशवाणी रिलेवेंट है, क्योंकि आज सूचना बहुत है लेकिन ऑथेंटिक और संतुलित सूचना कम है। करंट अफेयर्स और देश की खबरें, साइंस एजुकेशन, यह यूथ के लिए बहुत जरूरी है। फेक न्यूज़ के इस दौर में आकाशवाणी जैसी संस्था की अहमियत और भी बढ़ गई है। बल्कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक मार्केट पर थी। रोड साइड में एक अंकल वॉक कर रहे थे और मेरे सामने से जा रहे थे। उन्होंने हाथ पर रेडियो पकड़ा था जिस पर आकाशवाणी प्रसारण चल रहा था। मैंने उस पर कुछ पुराने गीतों का मजा लिया। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आकाशवाणी की आवाज़ यूं ही हर दिल तक पहुँचती रहे। मैं आप लोगों से

0: भी बढ़ गई है। बल्कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक मार्केट पर थी, रोड साइड में एक अंकल वॉक कर रहे थे और मेरे सामने से जा रहे थे। उन्होंने हाथ पर रेडियो पकड़ा था जिस पर आकाशवाणी प्रसारण चल रहा था। मैंने उस पर कुछ पुराने गीतों का मजा लिया। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आकाशवाणी की आवाज़ यूं ही हर दिल तक पहुंचती रहे। मैं आप लोगों से एक और बात अपने बचपन के दिनों की बात साझा करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरे जो बड़े पापा थे वो किसान मित्र हैं, वो सुबह सुबह रेडियो सुनते थे और हम उनके घर जाया करते थे और हम उनके घर जाया करते थे और बड़े पापा को खेतों के काम में हेल्प करते थे। साथ में बड़े पापा जो हैं रेडियो का कार्यक्रम स्टार्ट करते थे जिसमें किसानों के बारे में बताया जाता था, उनके योजनाओं के बारे में बताया जाता था, कैसे किसानी किया जाता है, और इसके साथ ही पुराने गाने सुनने को भी मिलता था जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। पुराने गानों में देशभक्ति गीत से ज़्यादा बजता था जिसके कारण मतलब उस टाइम ऐसा था कि मेरे अंदर देशभक्ति जागने लगी और मैं आर्मी में जाने का सोचने लगी। आगे समय के साथ मैं जा नहीं पाई लेकिन अभी भी मेरा इंटरेस्ट और गाने को सुनने की जो आदत है अभी भी है। मैं अभी भी कभी कभी गाने सुनती हूँ। हालांकि मैं जेन जी जनरेशन से बिलोंग करती हूँ, मेरा जो म्यूज़िक टेस्ट है वो अभी भी ओल्ड है। लता मंगेशकर जी के गाने, आशा भोसले जी के गाने अभी भी मेरे मन को तृप्त कर देती है। जो अभी के न्यू गाने हैं उनसे अच्छे मुझे पुराने गाने लगते हैं। उनके स्वर, राग, ताल जो मन को सुकून देते हैं वो अभी के गानों में नहीं है। और मेरे ख्याल से जो अभी के गाने हैं उसमें इतना कुछ है नहीं बेटर देन पुराने गानों से। मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हर दिल तक ऐसे गानों को पहुँचाते रहे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: 70 वर्षों का विश्वास, छिंदवाड़ा शहर के मध्य स्थित शिक्षा का मंदिर सेंट जोसेफ स्कूल अपनी एक और नई शाखा प्रारंभ करने जा रहा है, सेंट जेवियर ग्लोबल एकेडमी ICSE पैटर्न। तो आज ही अपने बच्चे के लिए स्थान सुरक्षित कराएं। हमारा पता है SBI मुख्य शाखा के सामने, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। प्रवेश हेतु संपर्क करें 7898091789।
1: दोस्तों, अभी हमने सुना हमारी युवा श्रोता पल्लवी ध्रुवे जी को। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में अगले क्रम, विज्ञान जगत की ओर। मित्रों, आज विज्ञान और तकनीक का युग तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई नई तकनीकों ने हमारे जीवन को आसान बनाया है और इन्हीं आधुनिक तकनीकों में एक महत्वपूर्ण नाम है ड्रोन तकनीक। ड्रोन आज केवल कैमरे से वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। मित्रों, ड्रोन एक ऐसा छोटा विमान होता है जिसे रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर तकनीक की मदद से संचालित किया जाता है, जिसमें कैमरा, सेंसर और GPS जैसी आधुनिक तकनीकें लगी होती हैं, जिससे यह आसमान से तस्वीरें, वीडियो और ज़रूरी जानकारी जुटा सकता है। आज ड्रोन तकनीक का उपयोग आम लोगों के जीवन में भी बढ़ता जा रहा है, जैसे किसान फसलों की निगरानी, दवाइयों और खाद के छिड़काव के लिए, बाढ़, भूकंप या आग जैसी आपदाओं में ड्रोन राहत और बचाव कार्य में, कुछ क्षेत्रों में इसके माध्यम से दवाइयां और ज़रूरी मेडिकल सामान पहुंचाया जा रहा है। फिल्म, समाचार और शादी समारोह में ड्रोन कैमरे का उपयोग बड़े स्तर पर हो रहा है। साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा निगरानी के लिए भी ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। तो सर, ड्रोन देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बन चुका है। ड्रोन सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करने में सेना ड्रोन के माध्यम से दुश्मन की स्थिति और गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करती है। जहां सैनिकों का जाना जोखिम भरा होता है, वहां ड्रोन भेजे जाते हैं। ड्रोन सुरक्षा बलों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सहायता करते हैं। ड्रोन तकनीक का उपयोग करके समय की बचत, कम खर्च, कठिन क्षेत्रों तक पहुँच जाना, सुरक्षा में मदद, मानव जोखिम में कमी आदि लाभ प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार ड्रोन तकनीक

आधुनिक भारत की प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यह तकनीक नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ देश की सुरक्षा को भी मजबूत कर रही है। दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम इसका उपयोग जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ करें, ताकि यह तकनीक देश के विकास में और अधिक योगदान दे सके। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये विज्ञान जगत का क्रम। आइए अब जुड़ते हैं दोस्तों हमारे और आपके मनोरंजन से भरे क्रम फिल्म संगीत के साथ, जिसमें हम पहला नगमा पेश कर रहे हैं फिल्म रन का, जिसमें संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, बोल हैं समीर के, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

फिल्म संगीत में आइए सुनाते हैं अब हम आपको फिल्म मैं प्रेम की दीवानी का यह प्यारा सा नगमा, जिसमें बोल है देव कोहली के, संगीत यह है अनु मलिक ने, आवाज़ है शान और चित्रा की।

दोस्तों फिल्म संगीत का क्रम रहेगा जारी, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं हमारा आज का इतिहास। मित्रों 26 मई सन 1906 को भारत के महान प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार राम किक्कर बैज का जन्म हुआ था। भारत के संविधान के तहत लागू होने के बाद नागरिकता अधिनियम का नियम सन 1950 में निर्माण हुआ था। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का ये घटना चक्र का क्रम। आइए जानते हैं कल के आकर्षण। दोस्तों कल आज की बात का विषय होगा ग्रामीण भारत की आवाज आकाशवाणी, होगा क्रम वसुंधरा, तरुणों की पसंद, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और हमारी अमृतवाणी। आइए मित्रों इसके साथ समाप्त होता है हमारा ये कल के आकर्षण का क्रम। आइए सुनते हैं अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों बहनों, दिनांक 28 मई 2026 दिन गुरुवार को आकाशवाणी छिंदवाड़ा से शाम 7:20 से रात्रि 8 के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय होगा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एवं भूमि की तैयारी और विषय विशेषज्ञ हुए डॉक्टर एस के अहरवार, शस्य विज्ञान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा। किसान भाई बहन हमारे फ़ोन नंबर 8989116346 पर कॉल कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। किसान भाई हमें अपने सवाल कार्यक्रम पूर्व व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602226263। तो किसान भाइयों बहनों सुनना ना भूलें सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, प्रसारण 28 मई 2026 दिन गुरुवार को आकाशवाणी छिंदवाड़ा से शाम 7:20 पर। इसी के साथ समाप्त होती है यह सूचना। आइए जुड़ते हैं पुनः हमारे क्रम फिल्म संगीत के साथ, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चलते चलते का यह प्यारा सा नगमा, जिसमें बोल हैं पप्पू ढिल्लन के, संगीत दिया है जतन ललित ने, आवाज़ें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की।

दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा क्रम फिल्म संगीत। आइए अब जाते जाते जानते हैं हमारी आज की अमृतवाणी। मित्रों, मुस्कुराहट और उम्मीद, ये दो चीज़ें हर मुश्किल सफ़र को आसान बना देती हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त आपकी अपनी रेडियो से की आंचल साहू को। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम संजवाती।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो शुरू हुआ है।
0: आकाशवाणी से शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम के अगले रचना सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: लीजिए कार्यक्रम की अंतिम रचना सुनिए सोनू निगम के स्वर में।

इस भक्ति रचना के साथ ही अब आज का संजीवाती कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओ, अगले गीत से पहले लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। किसान भाइयों बहनों, दिनांक 28 मई 2026 दिन गुरुवार को आकाशवाणी छिंदवाड़ा से शाम 7:20 से रात्रि 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय होगा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एवं भूमि की तैयारी, और विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस के अहिरवार, शस्य विज्ञान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा। किसान भाई बहन, हमारे फ़ोन नंबर 8989116346 पर कॉल कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। किसान भाई हमें अपने सवाल कार्यक्रम पूर्व व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602262263। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8602262263। तो किसान भाइयों बहनों, सुनना न भूलें सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी, प्रसारण 28 मई 2026 दिन गुरुवार आकाशवाणी छिंदवाड़ा से शाम 7:20 पर। सूचना समाप्त हुई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत राम लखन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत और संगीत एक बार फिर आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया गीत हिना फिल्म से।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में। फिल्म है राम तेरी गंगा मैली।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजों में, समीर के बोल नदीम श्रवण की तर्ज, फिल्म है राजा हिंदुस्तानी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, 7 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली

0: लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चार प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। IPL क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये छिंदवाड़ा केंद्र है, आइए सुनिए संदेश।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मां शिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और

0: सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लेख में उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधा फायदा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि देश अभी अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और यह लेख इसी सफर को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन किया। कल वे नाथुला दर्रे की यात्रा करेंगी और सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन किया। उन्होंने रामघाट पर मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर परिक्रमा का विधिवत समापन किया।
1: जल संरक्षण को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल, इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्यम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही। सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।
0: ये परिक्रमा कल गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव द्वारा पूजन के साथ शुरू हुई थी। ये परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 23 वर्ष पहले मां क्षिप्रा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की थी। पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरवा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे सिंचाई कुएं की मिट्टी धसक गई। इसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कलेक्टर उषा परमार और SP निवेदिता नायडू ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4,4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सांसद VD शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में BSF की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बल ने सीमा की रक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। श्री शाह ने BSF, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलाकर 4-स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया ताकि सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके।
3: BSF के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था BSF ने, वो न केवल डटकर रहे सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी BSF ने बहुत बड़ा योगदान किया।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब दुकानों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आबकारी नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश भर में अवैध अहाते, देर रात तक शराब बिक्री और ओवररेटिंग जैसी शिकायतों पर विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात को गश्त करेंगी और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हर दुकान पर शराब के दाम दिखाना और QR कोड लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में CBI ने भोपाल पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी ने मृतका के पति समर सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज की है।

कल रात टीम ने दोनों आरोपियों से 2.5 घंटे तक पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना भी किया। जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की जान गई थी और 28 लोगों को बचाया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब क्रूज को पहले ही नष्ट कर दिया गया है तो उसकी तकनीक जांच अब कैसे होगी। यह भी सामने आया कि क्रूज में NGT के नियमों के खिलाफ कमजोर इंजन लगा था और संचालकों के पास पर्यावरणीय अनुमति भी नहीं थी। आयोग ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के टोंक खुर्द में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए भी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। आयोग विस्फोट के कारण, लापरवाही और जिम्मेदारी तय करेगा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राहत बचाव की प्रभावशीलता की भी जाँच होगी। 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए MP लॉकर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज एक जगह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देती है। इस ऐप पर विवाह प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर रसीद समेत 22 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि AI की मदद से यह एप्लीकेशन खुद ब खुद दस्तावेजों को पहचान लेता है और किसी भी लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले ही अलर्ट भी भेजता है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद का त्यौहार पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया। सुबह से ही अलीगंज हैदरी मस्जिद समेत शहर की तमाम बोहरा मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफ़ेद पारंपरिक लिबास में सजे समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। खजुराहो और नौगांव में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिले हीट वेव की चपेट में हैं। अच्छी खबर यह है कि 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत मिले हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब एक विशेष सूचना। आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 वर्षों का लेखा जोखा और देश की बदलती तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा से खास बातचीत सुनिए आज रात 10 बजे सिर्फ आकाशवाणी भोपाल पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गंगा दशहरा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विवेकानंद घाट पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने श्रमदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडला में आज पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर शहरी परियोजना के सेक्टर 3 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE दिवस का सफल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में यातायात पुलिस के द्वारा परिवहन बसों की विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 138 वाहनों की जाँच की गई और धार में 1 जून को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे। 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में मां क्षिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। तुषार शर्मा मौत मामले में CBI का एक्शन। पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा से। प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को कुलदीप भैया
2: और पीयूष भैया की
1: राम राम। साथ ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज की चौपाल में, है ना। और पीयूष भैया बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं आप।
2: हाँ भैया,
1: मुझे लगता है कि गर्मी का आनंद भी ले रहे हैं।
2: अरे भैया, बहुत तेज गर्मी।
1: हाँ, तो इस गर्मी में हमें क्या ख्याल रखना चाहिए पीयूष भैया?
2: बिल्कुल भैया, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने पशुधन का, सभी का ख्याल तो रखना है भैया,
1: और साथ साथ खेतीबाड़ी के काम भी जो आने वाले हैं।
2: हाँ हाँ,
1: वो भी तो हमें करते रहना है।
2: हाँ भैया,
1: लेकिन सभी किसान भाइयों से हम यही कहेंगे कि भैया सुबह कर लें थोड़ा बहुत काम।
2: हाँ हाँ,
1: और शाम को कर लें।
2: हाँ,
1: लेकिन दोपहर में आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि नौतपा चल रहा है।
2: हाँ भैया, बहुत तेज धूप पड़ रही है और ऐसे में बीमार होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे आप घर पे रहे तो ज्यादा अच्छा है।
1: और किसी कारणवश भैया अगर निकलना पड़े भी
2: तो
1: भैया पहले पानी पी लें,
2: हाँ,
1: एक आठ ठो प्याज रख लें,
2: हाँ
1: है ना, और दुपट्टा वगैरह अच्छे से लगाएं।
2: हाँ हाँ
1: और पूरा झक कर जाए, मतलब
2: बिल्कुल,
1: लू
2: और
1: लपट
2: तभी
1: से बचे।
2: निकलिए, तब
1: हाँ
2: बहुत जरूरी काम हो तो ही निकलिए।
1: बिल्कुल। तो ये तो हमारी ऐसी राम राम के साथ हमारे किसान भाइयों का हमने हालचाल भी जाना।
2: हाँ हाँ
1: और पीयूष भैया, आज हमारी चौपाल में आप क्या क्या लेकर आए हैं वो भी हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों और बहनों को बता दीजिए।
2: बिल्कुल कुलदीप भैया, कुलदीप भैया, तो आज हम अपनी आज की बात जो करेंगे उसका विषय होगा मॉनसून के समय कैसे करें खेत की तैयारी। और भैया, आज की जो हम चर्चा करेंगे उसका विषय होगा नत्रजन उर्वरकों का जैविक विकल्प जो हरी खाद, इस विषय पर। और कुलदीप
1: बिल्कुल।
2: भैया, आज मेहमान भी तो आ रहे हैं।
1: हाँ पीयूष भैया, सही कहे आपने, मेहमान भी है। तो मेहमान है ग्राम सिरेगांव बीजागुरा विकासखंड परासिया के, है ना, युवा किसान है श्री पंकज सूर्यवंशी।
2: हाँ हाँ
1: और इनसे जो है बातचीत हम करेंगे सब्जी वर्गीय फसलों पर, है ना।
2: बिल्कुल भैया, और भैया इसके साथ होंगे ढेर सारा मनोरंजन, लोक संगीत और भजन भी।
1: बिल्कुल। और कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी होंगे।
2: हाँ हाँ
1: तो पीयूष भैया, क्यों ना हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें, हमारी आज की बात शुरू करें।
2: हाँ हाँ
1: उसके पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा भजन।
2: चलिए भैया, कुलदीप सागर की आवाज में।

0: श्रोताओं, लोक भजन के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और कुलदीप भैया, अब समय हो गया हमारी आज की बात का, और आज हम बात करेंगे मॉनसून के समय कैसे करें खेत की तैयारी, इस विषय पर। किसान भाइयों, भारतीय कृषि मुख्य रूप से मॉनसून वर्षा पर आधारित है। भारत में कुल खाद्य पदार्थों का लगभग 50% खरीफ फसलों को ही आता है, और मॉनसून के समय सुनियोजित तरीके से खेत की तैयारी और बिजाई करने पर पौधों का विकास तेजी से सामान्य और एक समान होने के साथ साथ ही फसलों की उत्पादन दर और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और सुनियोजित तरीके से जो खेत की तैयारी हम करते हैं और फसलों की बिजाई भी एक महत्वपूर्ण कार्य है इसके लिए।
1: बिल्कुल सही कहा पीयूष भैया आपने। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूमि की तैयारी हम कैसे करें, है ना। मानसून में सबसे पहले अब आने ही वाला है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हम भूमि की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले मृदा संरचना में खेत की ऊपरी सख्त सतह को तोड़ा जाता है, है ना, मतलब पलटा जाता है। जुताई वगैरह हम कर लेते हैं, है ना, तो मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की हम गहरी जुताई कर लें। साथ ही खेत की गहरी जुताई करने से भूमि में पड़े जो हैं रोगाणु धूप में मर जाते भी, है ना। इसके बाद 2-3 डिस्क हैरो लगाना चाहिए जो मिट्टी की ऊपर सतह के टूटे हुए बड़े बड़े ढेलों को बारीक करते हुए
0: छोटा कर देते हैं,
1: है ना, भूमि की ऊपरी सतह को मुलायम करने का काम करता है। और उसके बाद हम जो है लेवलर का उपयोग करते हुए भूमि को समतल हमें कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: भूमि को समतल करने का ये लाभ है कि भूमि से उपयुक्त जल निकास हो जाता है, ना, पानी एक जगह हमारा इकट्ठा नहीं होता। साथ ही यदि हम नाली बनाकर खेत में जल सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने में भी सुविधा हो जाती है।
0: बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात बताया आपने कि सिंचाई करने में भी हमें सुविधा मिलती है। और किसान भाइयों, वहीं हम स्वच्छता की बात करें तो अनेक प्रकार की रोगग्रस्त जो पत्तियां और अन्य भाग आदि फसल कटने के बाद मिट्टी में ही पड़े रह जाते हैं। इनमें ही व्याधिजन जो पैथोजन पाए जाते हैं जो अगली होने वाली फसल को संक्रमित करते हैं, और मिट्टी में पड़े संक्रमित मलबे को फसल कटने के बाद खेत के बाहर जमा करके जला देना चाहिए और खेत को इस प्रकार स्वच्छ कर देना चाहिए और खरपतवार भी उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये पौधों को कमज़ोर बनाकर रोग के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं और रोग आसानी से इसमें लग जाते हैं, और ये फसलों के पौधों के साथ पानी, उर्वरक और इत्यादि के लिए संघर्ष भी करते हैं। इस प्रकार ये फसल को प्रभावित करते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात बताई पीयूष भैया। और किसान भाइयों, भूमि की तैयारी की बात तो हमने कर ली, और अब दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है ना पीयूष भैया, वो होता है बीजों की खरीदी और उनके उपयोग के बारे में।
0: बिल्कुल भैया,
1: है ना। सबसे पहली बात तो ये हमें पता रहना चाहिए कि इस बार हमारी भूमि के हिसाब से हमें कौन सा बीज हमें लेना है। तो जब भी किसान किसी भी फसल का बीज खरीदने जाएं, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि बीज जो है हमारा गुणवत्ता युक्त हो।

0: है कि नहीं ये देख ले।
1: बिल्कुल
0: साथ ही बीज हमेशा भैया विश्वसनीय दुकान से ही ले,
1: हाँ
0: या फिर राज्य बीज निगमों से ले,
1: हाँ
0: या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों से अगर मिल रहा है तो वहां से ले, लेकिन किसी भी विश्वसनीय जगह से ही हमें
1: खरीदना
0: लेना
1: चाहिए
0: चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही किसान भाइयों को चाहिए कि वो बीज के पैकेट व थैले पर पैकिंग की तिथि व वर्ष भी देख ले, है ना।
1: हाँ इस
0: किसी
1: बात का
0: भी,
1: जरूर ध्यान दे,
0: हाँ, एक्सपायरी डेट का तो नहीं दे रहे
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: भी
0: है
1: ना
0: ना।
1: ले।
0: किसान भाइयों, यदि बीज 2-3 वर्ष पुराना है तो बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इस बीज की जीवितता जो है वो कम हो जाती है ना। और जैसा हम चाहते हैं वैसे हमें पौधे प्राप्त नहीं होते, अंकुरण नहीं होता है, इसीलिए नया बीज ले। और अगर हम पुराना बीज लेते हैं किसान भाइयों, तो उससे फसल की जो पैदावार है वो प्रभावित होती है। तो किसी भी स्थिति में हम सबसे पहले तो ये देख लें कि पैकेट पर नई डेट लिखी है या नहीं, हम एक्सपायरी तो नहीं ले रहे हैं। साथ ही किसान भाइयों, फसलों के संक्रमित बुआई के लिए इसको जो एक्सपायरी है उसका भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए ना।
1: हाँ
0: स्वस्थ बीज होने से एक फायदा ये है कि बीज में किसी भी प्रकार के रोग जो हैं नहीं लगते हैं, या लगते भी हैं तो कम होते हैं,
1: बिल्कुल, उसको
0: जिसे
1: अपन
0: हम
1: नियंत्रण कर सकते हैं।
0: नियंत्रण कर
1: हाँ
0: सकते हैं उसका, ना।
1: बिल्कुल। और किसान भाइयों, वहीं वहीं हम रोगिंग की बात करें तो जो रोगग्रस्त पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़कर खेत के बाहर जला देना चाहिए हमको। इससे कई बीमारियों का नियंत्रण होने में काफ़ी सफलता मिलती है। और बुआई के समय में परिवर्तन करना, फसल को उचित समय की बजाय जल्दी बोने से रोग संक्रमण से बच जाती है, और शीघ्र पकने वाली जो फसल का जल्दी बोना भी काफ़ी लाभप्रद होता है इसमें।
0: बिल्कुल। और किसान भाइयों, उचित सिंचाई के लिए फसलों में हमेशा उचित मात्रा में तथा उचित समय पर सिंचाई करने से फसल की पैदावार अच्छी होती है,
1: हाँ
0: साथ ही रोग संक्रमण की संभावनाएं भी कम हो जाती है
1: हाँ
0: ना। यदि अधिक मात्रा में सिंचाई करें या रोग संक्रमण के तुरंत बाद सिंचाई की जाती तो रोग जो हैं वो जल्दी से फैलते हैं ना।
1: हाँ भैया। और इस बात का भी ध्यान रखें कि उचित दूरी पर बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों को अधिक पास पास बोने से उनको उचित मात्रा में पानी और भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे पैदावार जो पौधे होते हैं उनकी पैदावार भी कमज़ोर हो जाती है, और जिसकी वजह से पौधों में जो रोग संक्रमण है वो आसानी से हो जाता है।
0: बिल्कुल। साथ ही किसान भाइयों, उचित फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए, है ना। रोगग्रस्त फसल कटने के बाद पौधों के बचे हुए भागों में पैथोजन रोगाणु रहते हैं, यही रोगाणु अगले साल उसी खेत में बोई जाने वाली उसी फसल को संक्रमित करते हैं, है
1: हाँ
0: ना। इसीलिए उस खेत में हमेशा रोग रोधी फसल बोने से रोग नियंत्रित हो जाता है।
1: बिल्कुल भैया।
0: साथ ही किसान भाइयों, संतुलित खाद का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। यह खाद पौधों को संतुलित रूप में दिया जाना चाहिए। पौधों में अगर हम खाद संतुलित रूप में देंगे ना, पीयूष भैया, तो रोगों की संभावना कम होती है,
1: बिल्कुल
0: ज़्यादा देने पे या कम देने में भी दिक्कतें आती है ना।
1: हाँ
0: क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता भी है कि अत्यधिक नत्रजन और कम पोटाश की मात्रा से भी व्याधि के संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल भैया, बहुत ज़्यादा बढ़
0: तो
1: जाती
0: ये
1: है।
0: तो थी किसान भाइयों हमारी आज की बात, जिसको हम दे देते हैं यहीं पर विराम, और बता देते हैं कि आज किस विषय पर हमारी बात थी। तो मानसून के समय कैसे करें खेत की तैयारी व बिजाई, इस विषय पर किसान भाइयों हमने आपसे बातचीत की, और निश्चित तौर पर आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। तो आप पत्र के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करिएगा। और चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मनोरंजन के साथ। और पीयूष भैया, आगे क्या है मनोरंजन में?
1: भैया, हम अपने श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं लोकगीत, जिसे आवाज़ दी है सुरेखा नामदेव और साथियों ने।
0: चलिए भैया, सुनते हैं।

ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं,

0: इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1-5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20-29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
6: श्रोताओं, इस संदेश के बाद चलिए अब समय हो गया हमारे आज के मेहमान क्रम का। और आज मेहमान क्रम में ग्राम सिरेगांव विकास खंड परासिया के युवा किसान श्री पंकज सूर्यवंशी से सब्जी वर्गीय फसलों पर कुलदीप आखरे की भेंट वार्ता आपको सुनवाते हैं।
7: किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम सिरेगांव कला विकास खंड परासिया के युवा किसान श्री पंकज सूर्यवंशी जी से। पंकज भैया राम राम।
8: राम राम कुलदीप भैया।
7: पंकज भैया, अभी आपके खेतों में करेला निकल रहा है, साथ ही साथ टमाटर भी आपके खेतों में लगा हुआ है, धनिया भी नजर आ रहा है और हरी मिर्च भी अभी आपके खेतों में लगी हुई है। चलिए हम करेले पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये करेला आपने कब लगाया हुआ था।
8: मैंने करेला लगाया था 1 जनवरी को, रोपाई करने के लिए मैंने उसके लिए डिस्पोजल यूज किया था
7: जी।
8: तो फिर मैंने डिस्पोजल में लगभग 1 महीने तक उसको उगाया, उसके बाद दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह ढके वके जो लगाने थे वो लगवाए।
7: कितनी भूमि में आपका करेला लगा हुआ है और उस भूमि के लिए आपने कितना बीज इस्तेमाल किया है।
8: मैंने इसे आधा एकड़ में लगाया हुआ है और मैंने इसको मतलब आधा किलो यूज किया।
7: और कितने प्लांट आपके खेतों में लगे हुए हैं।
8: प्लांट तो मैंने लगभग डिस्पोजल से लगाया था तो मेरे को सारी गिनती मालूम है, तो इस तरह मैंने 2800 पेड़ लगाए थे जिसमें से 2500 उग गए थे।
7: मतलब अभी 2500 पौधों में से फल आ रहे हैं। और अभी कितने तोड़े आपने प्राप्त कर लिए हैं।
8: अभी मैंने 5 तोड़े प्राप्त कर लिए हैं जिसमें मेरी लागत अभी तक हो गई है, अब जो भी होगा वो बेनिफिट मुझे मिलेगा।
7: और अभी करेले के भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं।
8: हाँ अच्छे मिल रहे हैं,

0: अच्छे ही चलते हैं, कभी कम हो जाते हैं और कभी ज्यादा।
1: पंकज भैया, करेला लगाने के लिए हमारी भूमि कैसी होनी चाहिए और साथ ही भूमि की तैयारी हम किस तरीके से करें?
0: पहले तो जमीन का चुनाव बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जमीन जहाँ से पानी का निकास आसानी से हो सके तो आप वहाँ करेला लगा सकते हैं। इसके बाद आप जुताई करवाएं एक दो, उसको वैसे ही रहने दें। और इसके लिए खाद बहुत जरूरी होती है, कि घर में गाय जानवर है तो वहाँ से खाद आपको आसानी से मिल जाती है, तो मैंने वहाँ पर खाद डलवा दिया। तो उसके बाद वो जमीन में फिर से जुताई की और फिर उसके बाद मैंने करेला लगाया। इसके लिए मैंने ढके लगवाए, जो हमारे खेत में बहुत सारे पेड़ थे तो उसे हमें आसानी से ढके मिल गए, नहीं तो अभी जो बांस वाला चल रहा है वो हमने अभी यूज नहीं किया, तो मुझे बहुत सस्ते में ये काम हो गया मेरा।
1: और अभी तक जैसा कि आपने बताया, कुल लागत आपकी कितनी रही है इसमें?
0: मेरी लागत ज्यादा नहीं रही है, टोटल 15,000 से 20,000 रही है जो अभी तक मेरे पास आ चुकी है।
1: पंकज भैया, करेले के अलावा भी आपके पास टमाटर लगा हुआ है, धनिया लगी हुई है, हरी मिर्च लगी हुई है, पूरे तरीके से आप सब्जी का काम कर रहे हैं। पानी की कैसी पर्याप्त मात्रा है आपके खेत में?
0: हाँ, मेरे पास तो 3 बोर है, जिसमें से एक पुराना है तो वो कम पानी देता है, बाकी पानी की कमी नहीं है। और पानी जो है आपको या ड्रिप सिस्टम भी हो सकता है या वैसी भी हो सकता है, तो आप ड्रिप सिस्टम यूज करें तो आप पानी की बचत ज्यादा होती।
1: आप किस पद्धति से पानी की सिंचाई करते हैं?
0: मैं तो अभी ड्रिप सिस्टम लगाने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरी वैसे ही जो जैसे रेलते हैं किवाड़ी बनाकर उस तरीके से हो रहा है।
1: जैसा कि आपने बताया कि ड्रिप सिंचाई पद्धति से फायदा होता है, तो अभी तक आपने ड्रिप सिंचाई का उपयोग क्यों नहीं किया?
0: मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अभी अभी से ज्वाइन किया है, मुझे नेक्स्ट सीजन बिल्कुल मैं ड्रिप पद्धति यूज करूंगा।
1: क्या आपको कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त होती है?
0: हाँ, वहाँ से भी सहायता प्राप्त होती है, वो आपका मिट्टी की उर्वरकता जांचने के लिए एक कार्ड बनवाते हैं, तो वो मैंने बनवाया हुआ है।
1: तो पंकज भैया, आपने अपनी भूमि का मिट्टी परीक्षण करवाया है सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से?
0: हाँ, मैंने करवाया है और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ कि जहाँ आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो वहाँ पे आप उतनी खाद दे सकते हैं, ज़्यादा खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इससे बहुत ज़्यादा मुझे मदद मिली है।
1: पंकज भैया, आप युवा हैं और इसी साल से आपने खेती करना शुरू किया है, पहली वर्ष में ही आपने करेला लगाया है, तो खेती में आने का आपका क्या मकसद रहा?
0: मैंने तो एक्चुअली इंजीनियरिंग की है, पर मुझे उधर ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट उधर साइड नहीं था, तो मुझे जो घर के मेरे पास जो खेती है, मैंने सोचा कि इसी पे क्यों ना अपन मेहनत करें और इसमें कुछ लाभ कमाएं।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। आप इंजीनियरिंग आपने की हुई है, लेकिन आपने उस फील्ड को छोड़कर खेती की तरफ अपने हाथ आजमाए और निश्चित तौर पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आप जैविक खेती, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, आपको जो भी हमारे युवा किसान भाई आपको जो सुन रहे होंगे, वे भी आपसे प्रेरित होंगे कि उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी हम खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। चलिए, अब चलते चलते जो हमारे जिले के युवा किसान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी युवा पीढ़ियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास ज़मीन है और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा है। अगर आप कुछ भी फसल लगाते हो तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है और आप बेशक इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ हम जैविक खेती का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस जैविक खेती बहुत अच्छी मानी गई है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। इसमें समय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए समय का सही उपयोग इसमें बहुत ज़रूरी होता है। जो भी युवा पीढ़ी है, उनमें किसी की अगर जॉब या नौकरी नहीं लग रही है तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो खेती आजमा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है।
1: चलिए पंकज भैया, हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इस वर्ष से आपने खेती प्रारंभ की है और आगे भी आप अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, जैविक खेती के माध्यम से खेती करते रहें और अपने अनुभव अपने युवा किसान भाइयों को देते रहें। आपने अपना अमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम।
2: श्रोताओं, अभी आपने मेहमान क्रम के अंतर्गत सुना ग्राम सिरेगांव विकासखंड परासिया के युवा किसान भाई श्री पंकज सूर्यवंशी से सब्जी वर्गीय फसलों पर कुलदीप आखरे की भेंटवार्ता। और कुलदीप भैया, अब अपना समय हो गया आज की चर्चा का।
3: बिल्कुल।
2: और आज हम चर्चा कर रहे हैं नत्रजन उर्वरकों का जैविक विकल्प हरी खाद, इस विषय पर। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जैविक कृषि की आवश्यकता को देखते हुए इसके महत्व का आकलन लगाया जा सकता है। हरी खाद जैविक कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का एक उत्तम जैविक विकल्प है। चलिए हम सबसे पहले अपने किसान भाइयों को बताते हैं आखिर हरी खाद क्या है। किसान भाइयों, हरी खाद एक प्रकार की जैविक खाद है। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसे उगाया जाता है।

0: और खेत में वापस मिला दिया जाता है और उन्हें उखाड़कर पहले कंपोस्ट बनाया जाता है, उसके बाद खेत में मिला दिया जाता है। हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलों को हरी अवस्था में ही खेत में मिला देने की प्रक्रिया को ही हरी खाद देना, जिसे ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा पीयूष भैया आपने। और हरी खाद के लिए फसलों का चुनाव करते समय बहुत सारी जरूरी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों, जैसे कि फसल शीघ्र उगने वाली हो, बढ़ने वाली हो, फसल अधिक पत्तीदार वानस्पति कंग मुलायम होने चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ऐसी हो, इनके भी सस्ते और आसानी से उपलब्ध हों, कीट व्याधियों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव कम हो, फसलों की जल मांग एवं पोषक तत्व की आवश्यकता कम हो, सभी प्रकार की मिट्टी और जलवायु के लिए उपयुक्त हो।
0: बिल्कुल भैया, अब हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं हरी खाद के लाभ के बारे में। किसान भाइयों, हरी खाद के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है और हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ती है और साथ ही गुणवत्ता में भी सुधार होता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता और सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी वृद्धि होती है और वायु संचार भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, और हरी खाद के रूप में प्रयोग किए गए दलहनी वर्ग की फसलें मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ना,
0: बिल्कुल
1: मृदा अपरदन में कमी आती है, साथ ही पोषक तत्वों का संरक्षण भी होता है।
0: हाँ
1: खेतों में हरी खाद उगाने से खरपतवार का प्रकोप कम हो जाता है, मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। हरी खाद के उपयोग से मृदा का तापमान फसलों एवं मृदा के सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल बना रहता है।
0: बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, अब हम आपको बताते हैं हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलों के बारे में। हरी खाद में रूप से जो दलहनी फसलें और अदलहनी फसलें, दोनों प्रकार की फसलों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताते हैं दलहनी फसलें के बारे में। तो किसान भाइयों, दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में मिट्टी में उगने पर ये फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पर मुख्य फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं और इनकी फसल अवधि कम होने के कारण इन्हें मिश्रित फसल, मध्यवर्ती फसल के रूप में या फसल चक्र में सम्मिलित किया जा सकता है। हम बात करें खरीफ ऋतु की, तो इसमें सनई, ठेंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार और नीर आते हैं। वहीं रबी ऋतु में लोबिया, सेंजी, बरसीम, मटर, मसूर, खेसारी और मेथी आते हैं। अब बात करते हैं अदलहनी फसलों की, तो अदलहनी फसलों में मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाते हैं और इसकी जो फसलें हैं वो है जई, ज्वार, मक्का, सूर्यमुखी, सरसों, तोरिया और भांग।
1: और किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं हरी खाद देने की विधि के बारे में। ये जो सीटू विधि है, इस विधि में जिस खेत में हरी खाद वाली फसल उगाई जाती है उसी खेत में फसल को उगाने के 40 दिन बाद 15 से 25 सेंटीमीटर की गहराई में पलट दिया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये विधि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। साथ ही हरी पत्ती विधि, इस विधि के अंतर्गत एक क्षेत्र में हरी खाद की फसल उगाकर या पेड़ पौधों की हरी पत्तियों को तोड़कर दूसरे क्षेत्र के खेत में दबा दिया जाता
0: बिल्कुल
1: है। ये विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल भैया, और यही थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें हमने आज चर्चा की नत्रजन उर्वरकों का जैविक विकल्प हरी खाद पर।
1: चलिए अब हमारी आज की चर्चा को यहीं पर हम दे देते हैं विराम और चलिए सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
0: चलिए,
2: किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड

से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
3: और भैया, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना हमारे किसान भाइयों को हम बता दें। भैया 28 तारीख को, गुरुवार को, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनना ना भूलें। साथ ही आप फ़ोन लगा सकते हैं। उस दिन हमारे कार्यक्रम का विषय होगा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एवं भूमि की तैयारी।
4: बिल्कुल।
3: और हमारे विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के अहिरवार, शस्य विज्ञान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से।
4: बिल्कुल। और भैया, अब समय हो गया है हमारे सभी श्रोताओं से विदा लेने का, तो मैं पीयूष भैया
3: और मैं कुलदीप भैया लेते हैं आप सभी से विदा और कहते हैं
4: राम राम,
3: जय जवान, जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे उनका प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। पेश है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके मित ये गीत।

आप सुन रहे हैं अपने दिलों की धड़कन, अपनी फीलिंग्स का स्टेशन FM 102.2 MHz, दिल से दिल तक। और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सेवा पारी, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम आपके मीत ये गीत, जहां बातें भी आपकी, एहसास भी आपके और गीत भी आपके ही दिल से निकले हुए। कभी ये गीत मुस्कुराते हैं, कभी याद दिलाते हैं और कभी मन को यूं ही छूकर निकल जाते हैं। तो चलिए आज की इस सुरीली शाम को एक हसीन शुरुआत देते हैं।

कार्यक्रम में पहला खत हमने लिया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर का। आप लिख

में जिंदगी पूरी नहीं होती, लेकिन गीत उसे पूरा महसूस करा देते हैं। सफ़र कैसा भी हो, लंबा छोटा, मुश्किल या आसान, एक अच्छा गीत हर रास्ते की थकान मिटा देता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम भी तो वही कोशिश करता है, आपके दिल से निकली बातों और पसंद के गीतों को एक जगह लाने का। तो आइए सुनते हैं आपका मीत बना ये गीत, जो हमारे कार्यक्रम का पहला गीत है।

अगला खत हमें लिखा है उर्धन ओसियन से, गफ्फार बाबू, रामाशीष यादव, तेज प्रताप शाही, रविशंकर सतवई, जितेंद्र गुप्ता, नॉर्थ चांदामेटा से अब्दुल अशफाक, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रज्जाक और सज्जन भाई। आप लिखते हैं, कई बार हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि मुस्कुराना तक भूल जाते हैं। ज़िंदगी की जद्दोजहद में तब हमें मायूसी से दुचार होना पड़ता है। कई बार तो बात रूठने बनाने तक आ जाती है।

श्रोताओ, बात सही है, छोटी सी मुस्कान भी दिल का भार हल्का कर देती है। आपकी उसी प्यारी सी मुस्कान के नाम जो कभी खो जाती है पर दिल हमेशा उसे ढूंढ लेता है और मना भी लेता है। हम सुनवा रहे हैं आप सबका मीत बना ये गीत राजकुमार फिल्म से।

अगला खत हमें लिखा है मातेश्वरी मंदिर जगदेव मोहल्ला अमरवाड़ा से शिवलाल जावरिया, श्रीमती रीना जावरिया, पीयूष जावरिया, उर्वशी जावरिया और प्रियांश जावरिया ने, और ये हैं राम मंदिर के पास परासिया से देवेंद्र बख्शी, मुफ्ती भाई, शकुन साहू, उवेश दलत, बसंत वर्मा, राजू यदुवंशी, रघुवीर सूर्यवंशी और प्रमीला यादव। आप सब लिखते हैं कभी कभी कोई धुन बजती है और अचानक यादें बारिश की तरह बरसने लगती हैं। पुराने दोस्त, स्कूली दिन, पहली मोहब्बत या किसी खूबसूरत पल की मुस्कान, सब एक ही धुन में बंधकर सामने खड़े हो जाते हैं। श्रोताओं, यादों को साझा करने से उनका रंग और भी गहरा हो जाता है। तो आइए सुनते हैं आप सबका मीत बना ये गीत महबूब की मेहंदी फिल्म से।

दिल की राहें बड़ी अजीब होती हैं, कभी सीधे रास्ते पर ले जाती हैं, कभी मोड़ दिखाती हैं और कभी वहीं पहुंचा देती हैं जहां हम रहना चाहते हैं। ये कहना है हमारे इन श्रोताओं का। न्यूटन चिकली से देवी शंकर गुप्ता, श्रीमती उमा गुप्ता, रोहन गुप्ता, देवेश गुप्ता, पप्पू गुप्ता, प्रिया, अर्पिता गुप्ता और मुनिया। पुणे से प्रियंका आर्य, पंकज वाडोते और इनके साथियों का। जी हाँ श्रोताओं, इन राहों पर जो भी मिलता है, एक एहसास, एक रिश्ता, एक दोस्त, सब कुछ अनमोल बन जाता है। और गीत तो इन राहों के साथी हैं ही। लीजिए, आप सबकी पसंद पर पेश है वो गीत जो आज आप सबका मीत बना है, आंखें फिल्म से।

0: कभी कभी।
1: और अब आज के इस कार्यक्रम का आखिरी खत हमने लिया है टावर एस्टेट न्यूटन से। निसार खान, उमेश गुप्ता, मोहम्मद इब्रार, भागचंद सेन, मुकेश सैनवार, कपिल, महेश और रानी शुक्ला, जामे रोड चांदामेटा से रफ़ी खान, सादिया, जोया, जारा, आलिया और अलीशा खान का। आप सब लिखते हैं, जीवन की किताब में हर दिन नया पन्ना जुड़ता है, हर पन्ने पर कोई न कोई धुन अपनी पहचान छोड़ जाती है जो ताउम्र की याद बन जाती है।

श्रोताओं, आपका ये सफ़र, आपका ये प्यार, ये साथ, यही तो हमारे लिए हर दिन की नई धुन है। तो चलिए आज की शाम को एक खूबसूरत सुर से पूरा करते हैं आपके मीत बने इस गीत से, जिसे ममता फिल्म से हमने लिया है।

श्रोताओं, ये था आज का सफर आपके मीत ये गीत के साथ। उम्मीद है आज के कार्यक्रम ने आपको थोड़ा सा सुकून, थोड़ी मुस्कान और ढेर सारी यादें दी होंगी। मैं आपकी रेडियो दोस्त ज़ेबा बारी आपसे इजाज़त लेती हूँ। आवाज़ और एहसास का ये सिलसिला अगली दफ़ा फिर वहीं से शुरू होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, प्रस्तुत है सबरस। कार्यक्रम की पहली रचना अनूप जलोटा के स्वर में।

0: इस गजल के साथ ही अब आज का सबरस कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
2: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
1: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
2: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
1: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
2: हाँ
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही देर में सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या।

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरपेट और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज़ों से। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया, गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार। आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

उनके पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

की जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

कुछ। करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया।

और यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

0: मोहब्बत बुरी बीमारी।
1: कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वा बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी ज़िंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपलें हरी हो उठती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झड़ती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटकेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और कानाफूसी करती रहीं पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब, मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, ये ख्वाब सिर्फ इंतज़ार होते हैं।

यादें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं, उसमें नजर आते हैं बीते समय। यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगू करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता, गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सूना सूना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूं हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हां, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों

0: दीप
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: जाए रात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि

0: the Northern Railway zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price, MAPP, of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। कल हम अपनी पहली सभा में सुबह 5:55 पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।